FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई 2026 सुबह के 5:58 और 39 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है।

FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी

0: मुकम्मल है। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मिक्स 1.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप आनंद ले रहे थे भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस, जिसके संगीत निर्देशक और निर्माणकर्ता हैं सतीश भाटिया। स्वर दिया है श्रीकांत पर काम करने।

भारत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस, जिसके संगीत निर्देशक और निर्माणकर्ता थे सतीश भाटिया, स्वर दिया था श्रीकांत परगांवकर ने। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज शुक्रवार है, विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, तदनुसार 22 मई 2026। और अब एक नज़र टुडेज अपडेट्स पर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 22 मई 2026 यानी आज सुचारू रूप से कार्य करने वाली देखभाल अर्थव्यवस्था का सृजन विषय पर एक आभासी कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की बढ़ती बुजुर्ग आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी का लाभ उठाते हुए देखभाल सेवाओं के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप और केयर गिवर डैशबोर्ड का शुभारंभ किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किया है। इसका जो उद्देश्य है वो है मिशन लाइफ के, इस कार्यक्रम को मिशन लाइफ के जन जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किया गया है। और ये इसका जो विषय है यह है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। इस विषय पर आधारित विश्व पर्यावरण दिवस थीम के अनुरूप इसे लिया गया है और इसका उद्देश्य युवा छात्रों में जैव विविधता संरक्षण, जलवायु कार्रवाई, वन्य जीव संरक्षण, स्वच्छता और सतत जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो ये थी कुछ एक टुडेज अपडेट्स।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

अब जानिए आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:40 पर सुनिएगा गांधी चर्चा कार्यक्रम। सुबह सवेरे का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर और सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र लेकर हाजिर होंगे सुबह 10:00। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10 पर।

कार्यक्रम अन्नदाता पेश करेंगे शाम 6:30 पर और साथ ही शाम 7 बजे समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम संसार का। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8 बजे। संगीत के आकर्षण में सुबह 7:50 पर सुनिएगा हरियाणवी लोक गीतों का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा। सुबह 9:30 पर पेश करेंगे कार्यक्रम स्वरांजलि। गाने नए पुराने इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा शाम 5:05 पर। जय जवान कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 7:30 पर और कार्यक्रम गुलदस्ता पेश करेंगे शाम 7:45 पर। कार्यक्रम चांदनी रातें का आनंद लीजिएगा रात्रि 10 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकेंगे सुबह 9:45 से सुबह 10 बजे तक, फिर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक और रात्रि 9:15 से रात्रि 10 बजे तक। तो ये थी आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडॉलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडॉलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहलीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केंद्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुंबई नगरम् अपि गतवान्। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्पर हितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरं अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीयवाणिज्योद्योगमन्त्री पी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे।

0: के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभ जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. Mr. Christodoulidis arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road, Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vafaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. The first International Big Cat Alliance, IBCA, summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum summit at several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it has been cleared that the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The Calcutta High Court has ordered setting up a 3-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 till her cremation. A division bench comprising Justices Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh yesterday said the CBI's joint director East will head the team. The other two members of the team would be decided within 48 hours of the court's order. The young medic was sexually assaulted and murdered in the hospital on the night of August 9, 2024. Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Ministry of Railways has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at the Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Minister of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway officials and field officers from across the country, attended the meeting. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him the opportunity to meet with ministers from the Quad nations.
3: There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I went, I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India. And we're going to do one later in the year as well.
2: Mr. Rubio will be in India from the 23rd to the 26th of this month and will visit Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. The Quad meeting is scheduled on the 26th of this month. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
4: FMX 1.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है. आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिल्का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई,
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं है, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
2: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
2: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ जी जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
2: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती
2: जी।
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
2: सुंदरबन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
2: जी
1: हाँ, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
2: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों

0: वो एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ। ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही है।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
1: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
0: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: जी सुनिए।
4: हाँ।
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
4: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ।
4: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
2: अरे अरे, इसको भी डालो।
4: हाँ,
2: ये देखो
4: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये, ये पौधा कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
2: प्यारा लग रहा है।
0: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
4: देखा थिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
4: हाँ।
2: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
4: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
5: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
6: ऐसा लग रहा है जैसे हमारा शहर हो।
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
7: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।

0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
1: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय पटीलैंग डिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: साइलेंट स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, वेलकम। हमने बच्चों को 5 मिनट दिए थे ये डिसाइड करने के लिए कि वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बनना चाहते हैं। वी रिक्वेस्ट एंड एक्सपेक्ट कि आप बच्चों को घर पर तैयारी करवाएंगे। मैं नाम नोट कर रही हूँ। मेहर, क्या बनोगे बेटा?
5: मैं प्रिंसेस बनूंगी।
4: वाह, प्रिंसेस। आयुष, लायन। वसुधा,
6: मैं अपनी मम्मा जैसी बनूंगी।
4: मम्मा जैसी कैसे बनोगी बेटा?
6: इजी है, लिपस्टिक से पापा की मार का निशान पहले राइट गाल पे, फिर लेफ्ट गाल पे, फिर आंखों के नीचे, फिर माथे पे और फिर एक बाजू पे। बस बन गई मम्मा।
4: हमारे बच्चे देख रहे हैं, लिंग पर आधारित हिंसा रोकें। हर बच्चा हिंसा रहित घर का अधिकारी है।
3: हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा में आप सुनिए गांधी जी के विचार, बापू का प्रिय भजन और राम धुन। पहले गांधी जी के विचार।
1: गांधी जी महान नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। विश्व के बड़े बड़े सुधारकों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, अतः भारतवासी उन्हें महात्मा कहते थे। लेकिन ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि गांधी जी महान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मनीषी भी थे। उन्होंने

0: देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का गहराई से अध्ययन किया था। वे ये जानते थे कि किन परिस्थितियों में कौन सा कदम उठाना चाहिए। उनमें यदि निर्णायक योग्यता न होती तो देश के सामाजिक जीवन में अपने नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के इतने क्रांतिकारी और सफल प्रयोग वे कर ही ना पाते। महात्मा गांधी मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं और उनके विचार में मनुष्य स्वार्थी नहीं है। साथ ही संपत्ति मानव इतिहास में बाद में उत्पन्न हुई थी, अतः मानव में क्रियाशीलता लाने के लिए संपत्ति के लालच की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें व्यक्ति का दोष है जिसने व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत आविष्कारों से वंचित कर दिया है और व्यक्ति और व्यक्ति के बीच दूरी बनाए रखने का माध्यम संपत्ति को बना दिया है। व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखते हुए गांधी जी ने सामाजिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए बताया कि शक्ति के प्रयोग से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसके लिए तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार के बंधन ना हो। उत्पादन करने और अपने आप को विकसित करने का इसे पूर्ण अधिकार है। सर्वोदय समाज में मनुष्य अपनी सुंदर कल्पना को साकार रूप देगा। महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया के राष्ट्रों का असली लक्ष्य अपनी अपनी अलग आजादी नहीं है। हमारा सभी का लक्ष्य है अपनी इच्छा से सबका एक दूसरे पर निर्भर होना। गांधी जी अद्वैत को मानने वाले थे। वे सभी इंसानों की बुनियादी एकता मानते थे। गांधी जी का कहना था कि अगर एक आदमी रूहानी तौर पर ऊपर उठता है तो सारी दुनिया इसके साथ उठती है और अगर एक आदमी गिरता है तो उस दर्जे तक सारी दुनिया गिरती है। गांधी जी समाज संस्कार के साथ साथ समाज रचना का भी कार्य करते थे। उनके इस कार्य का महत्व गांधी जी के समाज में बहुत कम लोगों ने समझा था। जिन लोगों ने उसमें भाग लिया उसमें से अधिकतर ने उसे अपने नायक की आज्ञा मानने के रूप में किया। स्वयं उनका उस ओर विशेष आकर्षण नहीं था कि उनके सामने बराबर ये प्रश्न रहता था कि अहिंसा और सत्य के आधार पर न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। प्राचीन दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस विषय पर खूब चिंतन और मनन किया तथा अपनी कृतियों में प्रकाश डाला, परंतु ये विचार बहुत कम किया गया कि समाज संगठन कैसे हो, समाज ऐसा बने कि मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण हो। गांधी जी ने आध्यात्मिक विचारधारा को व्यक्तियों तक ही सीमित न रखकर उसका समाज व्यवस्था और परिस्थिति निर्माण में यथेष्ट समावेश करने का समर्थन किया। श्री कृपलानी ने लिखा है, गांधी जी का मत था कि नैतिक अच्छाई हवा में नहीं रहती बल्कि समस्त सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में निहित होती है। अतः सामाजिक संगठन को अवश्य जागरूक करना चाहिए जिससे वो नैतिक धर्म को प्रतिबिंबित करे। मनुष्य समाज में पैदा होता है, उसी में बढ़ता है, उसी में मरता है। मानव शरीर की भांति उस समाज को भी ईश्वर का उपयुक्त मंदिर बनाना चाहिए। बुद्ध ने निर्वाण करने के बाद ये आकांक्षा प्रकट की थी कि उनका तब तक फिर जन्म हो जब तक कि अंतिम मानव का कल्याण न हो जाए और जनतंत्र के अधिकार पर व्यवस्थित और संगठित समाज में नागरिक का कर्तव्य निभाने वाले अपनी दिनचर्या में प्रत्येक सामान्य स्त्री और पुरुष के लिए नैतिकता पूर्ण जीवन संभव हो सके। गांधी जी भी सभी के उत्थान के संबंध में इसी विचारधारा से प्रभावित थे। यद्यपि समय समय पर कुछ संतों और महिलाओं आदि ने समाज में सबकी सुखी होने की बात कही, पर प्रायः आदमी की नीति स्वार्थ मूलक रही। उन्होंने अपना हित सोचा, अपने परिवार वालों का, अपनी जाति बिरादरी या अपने समूह का, अपने पराये का भेद बना रहा। समाज रचना का ये दोष गांधी जी के लिए असह्य था। उन्होंने ये घोषणा की, मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या के ज्यादा से ज्यादा भले के सिद्धांत को नहीं मानता। उसे खुले रूप में देखें तो उसका अर्थ ये होता है कि 51% के मान लिए गए हितों पर सबका बलिदान कर दिया जाना उचित है। ये सिद्धांत निर्दय है और इससे मानव समाज को बहुत हानि हुई है। सबसे ज्यादा से ज्यादा भला करना ही एक सच्चा गौरव युक्त और मानवता युक्त सिद्धांत है और ये सिद्धांत अधिकतर स्वार्थ त्याग से ही अमल में लाया जा सकता है। गांधी जी ने समय समय पर राज्य व्यवस्था के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके सामने भारतीय राष्ट्र के समग्र जीवन का प्रश्न था। उन्होंने राम राज्य की परिभाषा इन शब्दों में की थी। धर्म की निगाह में राम राज्य का मतलब है वो पूरा पूरा लोक राज्य, जिससे अमीरी गरीबी, रंग, नस्ल या धर्म, मजहब के आधार पर किसी तरह का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा। राम राज्य में भूमि और राज्य दोनों की मालिक जनता होगी। गांधी जी ने ये भी कहा है कि मैं एक ऐसे हिंदुस्तान को लाने के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी ये महसूस करे कि ये देश उसका देश है, जिसके बनाने में उसकी भी पूरी पूरी राय और उसका हिस्सा है। उस हिंदुस्तान में ना कोई ऊंची जाति होगी और ना कोई नीची जाति होगी, उसमें सब धर्मों के लोग पूरे मेल मिलाप के साथ रहेंगे। इस तरह हिंदुस्तान में छुआछूत के लिए और किसी तरह की नशे की चीजों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को। ये हिंदुस्तान है जिसका मैं सपना देखता रहता हूँ।
1: और अब सुनिए बापू का प्रिय भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा। इसमें आज आप सुनेंगे अनिता पांचाल और उनकी सखियों के द्वारा गाए गए कुछ एक लोकगीत। लेकिन उससे पहले सुनिएगा ये संदेश।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है।

अभी आप आनंद ले रहे थे हरियाणवी लोकगीतों के कार्यक्रम बाजे नगाड़ा के, बाजे नगाड़ा का। इसमें हमारी आज की कलाकार थी अनीता पांचाल और उनकी सखियां। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
5: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी

0: कृष्णम ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के दो दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
3: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5 लाख की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
6: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over two decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
5: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business, and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The first International Big Cat Alliance IBCA summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed to a later date. The summit focuses on the conservation of seven big cat species, which are tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma, and their ecosystems. A report.
7: The International Big Cat Alliance IBCA Summit was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. Following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it was decided that in order to ensure broad and active participation from all range countries, including African countries, the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has said that the new dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The ministry added that India remains firmly committed to working with all partners to advance the shared objectives of biodiversity conservation and sustainable development. Samarth Singh for Akashwani News, Delhi.
5: Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior Railway Board officials and field officers from across the country, attended the meeting. We have a report.
8: According to Ministry of Railways, initial investigations into several recent incidents, including some fire-related cases, have pointed towards the involvement of anti-social elements. The Railway Protection Force is actively probing these incidents. Officials noted during the meeting that timely and proactive action by railway authorities in several instances helped prevent larger mishaps. The railway said it is intensifying the use of modern technology tools such as artificial intelligence, drones and CCTV systems to strengthen the safety of passengers, trains and the wider rail network. The initiative is being carried out in mission mode with a focus on improving intelligence gathering at the beat level of the RPF. Railways Minister Ashwini Vaishnav said intelligence gathering from the field is being strengthened using modern technology tools. Meanwhile, the advisory from the ministry is crucial amid rising Russian trains due to vacation season, and so it is important for passengers to remain alert and vigilant while travelling. Komudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
5: The Calcutta High Court has ordered setting up a three-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. We have more from our correspondent.
9: The three-member seat will be led by the Central Bureau of Investigations Joint Director for Eastern Zone. The court has asked the team to find its report by 25 June. A division bench of Justice Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh directed the CBI to retrace events from the victim's dinner on 9th August 2024 through to her cremation. The agency has also been given freedom to investigate

दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है सुबह सवेरे। ये सुबह सिर्फ घड़ी में 8:30 बजाने का नाम नहीं है, ये वक्त है खुद से मिलने का, अपने विचारों को दिशा देने का और दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करने का। जी हाँ, मैं हूँ आरती, आपकी रेडियो मित्र, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे, और ये है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र FM 101.4 MHz। तो कीजिए स्वीकार आरती का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ समय बिताना नहीं बल्कि हर सुबह को सार्थक बनाना है, आपका ज्ञान बढ़ाना है और आकाशवाणी के परिवार को बड़ा बनाना है। तो पेश है आज का ये पहला दमदार गीत।

दोस्तों, धरती के भीतर जब लावा उबलता है तो प्रकृति हमें याद दिलाती है कि उसकी शक्ति कितनी अद्भुत और रहस्यमय है। ज्वालामुखी, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में आग, धुआं और विस्फोट की तस्वीर जो है वो उभर आती है। दुनिया के कई देशों में सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है? जी हाँ, और वो आज भी समय समय पर सक्रिय होता रहता है। तो यही है आज का सवाल, आपको बताना है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। आज आपको उस द्वीप का नाम बताना है। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो तुरंत भेजिए अपना उत्तर हमारे फोन नंबर पर 9466021336 पर SMS के द्वारा 8:45 तक। तो दोस्तों, सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। बस आपको सही जवाब, सही समय का ध्यान रखना होगा और एक SMS में सिर्फ 3 नाम लिखने होंगे। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। आज आपको बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन की सांसों से जुड़ा है, हमारी धरती की धड़कनों से जुड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। जी हाँ, हर साल 22 मई को दुनिया भर में जैव विविधता के संरक्षण और महत्व को समझाने के लिए दिवस मनाया जाता है। दरअसल धरती पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, यानी कि जंगलों के पेड़, खेतों की फसलें, नदियों की मछलियां, आकाश के पक्षी और यहां तक कि हमारी मिट्टी में मौजूद छोटे छोटे जीव, ये सब मिलकर जैव विविधता बनाते हैं। इस दिन की शुरुआत साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता पर एक महत्वपूर्ण संधि को अपनाया गया था और उसी की याद में ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि जैव विविधता ज़रूरी क्यों है। देखिए, हमें भोजन, दवाइयाँ और स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए, ताकि सब हमें मिलती रहें, इसके लिए जैव विविधता बहुत ज़रूरी है। जैव विविधता से ही जलवायु संतुलन बनता है और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा होती है। हमारी संस्कृति और परंपराओं का आधार भी जैव विविधता है। अगर जैव विविधता कम होती है तो इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण पर पड़ता है। भारत विश्व के 17 मेगा बायोडायवर्सिस देशों में से एक है। यहाँ हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर पश्चिम घाट और सुंदरबन के मैंग्रोव तक अनगिनत प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस वर्ष की, इस दिवस की जो थीम है वो है कि हर वर्ष इस दिवस की एक विशेष थीम होती है जो हमें प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक और सक्रिय बनाती है। तो और अब बात करते हैं कि हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। देखिए, हमें अपने आसपास जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, जल और बिजली को बचाना होगा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, स्थानीय और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना होगा, बच्चों को प्रकृति से जोड़ना होगा। और साथियों, जैव विविधता केवल प्रकृति की संपदा नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की अमानत भी है। तो चलिए इस अमानत को मिलकर सहेजते हैं, संवारते हैं

सच्चा के तू परना हमेशा आगे बढ़ना सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे काम तू अच्छे करना सिर्फ अल्लाह से डरना सभी को गले लगाना मोहब्बत में लुट जाना मोहब्बत वो खजाना है कभी जो कम नहीं होता है जिसके पास ये दौलत

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे है पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: दोस्तों, चलिए अब शामिल करते हैं आप सभी के नाम जिन्होंने दिया है आज के सवाल का सही जवाब। और सवाल का सही जवाब और उससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, लेकिन पहले आपके नाम हम शामिल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो जवाब मिला है वो है हमारे साथी नाहन हिमाचल प्रदेश से, योगी ठाकुर, रीमा ठाकुर। अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं ललिता सिंह और भगवान सिंह का, जो कि शिलाई हिमाचल प्रदेश से हैं। सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। आकली दीवान मध्य प्रदेश से हैं रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, विक्रम योग भारती, संध्या सैनी, हरमन योग भारती और इनके साथी हैं फाल संडा जाटान कुरुक्षेत्र से। रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, गुरुशब्द सिंह, राहुल ये हैं योगी मोहल्ला बराड़ा अम्बाला से। टीया और कृष्णा है सोलन हिमाचल प्रदेश से। साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति हैं खमरिया छत्तीसगढ़ से। विजय सुरलकर और रतनमाला ये हैं मोटाला महाराष्ट्र से। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमारे साथी हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा और इनके साथी। खंडवा लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे और शीला धनजे। और शनि मंदिर चौक खंडवा से हैं दुर्गा प्रसाद सैनी। पाजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से हमारे साथी हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया। ढाणे कुतुबपुर हांसी से हैं रामधारी अवाना, अनाया और ओजस अवाना। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से हमारे साथी हैं सुरेंद्र दत्ता, बंटी और शंटी। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा। सरोज सैनी, राकेश सैनी और यादवेंद्र सैनी ये हैं सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। राजा जी नगर बेंगलोर से हैं NR प्रसाद, अखिला प्रसाद, विनोद तोमर, संजू देवी और ममता देवी हैं सिरमौर हिमाचल प्रदेश से। विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक और इनके साथी हैं बोरखेड़ा पित्रावल उज्जैन मध्य प्रदेश से। सब्जी मंडी जींद से हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लाव्या और इनके साथी। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद साहू और बीमा साहू। आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर ये हैं गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। नेहरू चौक पैठण से हैं सुरेश जाधव, अनिता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव। पीपरलोड सरगाम छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा हैं चंडीगढ़ से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि सानवी और स्वस्थ छाबड़ा परिवार। कल्याण मुंबई से हमारे साथी हैं किशोर।

0: हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले, छत्तीसगढ़ बौरसरा नैरा से हैं, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ बौरसरा से हैं वैभवी साहू और विभूति साहू। भाड़ा ब्राह्मणावाला से हैं मेघराज शर्मा। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने आज एक व्यक्ति का नाम लिख भेजा है, जबकि हमने द्वीप का नाम भेजा था, तो ये जवाब गलत हुआ, इसीलिए हम ये नाम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाएंगे। फिर है जी पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु और इनके साथी। आरसी कामड़े, करुणा कामड़े हैं जवाहरनगर दुर्ग से। रानीगंज बंगाल से हैं रवि और इंदर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा रानी, माफ कीजिएगा, उषा राय और अमित कुमार राय। मंगनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव, निशांत ध्रुव। डेर पाटन गुजरात से हैं धीरज वीर अबारी। जयश्री हैं सुनील बेंगलोर से। और चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया। हनुमन शिंदे, ऋषिकेश शिंदे हैं सांगली से। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज ये हैं गिरिडीह झारखंड से। गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे और रक्षता लोखंडे। मुरादगढ़ से रमेश कुमार कंबोज वंश और भुवेश कुमार कंबोज। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार ये हैं ऊपरकोट बुलंदशहर से। सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्य मल्होत्रा है अनारकली बाजार जगराओं से। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी। लाडवा से हैं चांद ढींगरा, ईशु और एमी। सेक्टर दो कुरुक्षेत्र से हैं जगपाल हुड्डा, सानिध्य हुड्डा और सुनैना हुड्डा। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से हैं तुलसी मस्किन। मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और फातिमा गाजी ये हैं गंज डुंडवारा से। सुधा नारायण के हाली बेंगलोर से हैं। जगाधरी से हैं विनय मोहन खारवन। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी और नवेद सुहेल अब्बासी ये है मारहरा दरवाजा एटा से। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा और राहुल शर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू। नरेश मल्होत्रा नीटू, भावना मल्होत्रा, अनिल कटारिया है खैल बाजार पानीपत से। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु। धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परिहार है भोपालगढ़ राजस्थान से। अमीर खुसरो रोड गंज डुंडवारा से है डॉक्टर से है दबीरुल हसन, शबनम अनवार और शेख मोहम्मद कलीम। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान। भुवन प्रकाश गौतम, श्रेय गौतम ये हैं गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया विशाल सपकाल। बिहार स्टेट डुमराम से हैं वलीउल्लाह अंसारी, छत्तीसगढ़ से हैं प्रभा जयपुरिया और गोरैया, जालंधर से हैं अशोक जाटव। प्रमोद कुमार साहू और कविता साहू हैं कदुआपड़ा जगत सिंहपुरा ओडिशा से। कलाना भाद्रा हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, योगेश कड़वासरा और इनके साथी। उगाला अम्बाला से हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और इनके साथी। इंदिरा विहार दिल्ली से हैं डब्लू अंसारी और डोंडी लोहारा से हैं राधिका बेलदार, प्रभा बेलदार। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से हैं वीना ढींगरा, कृतिका विशु और विजय। नल्लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, माघीराम सैनी, पूनम सैनी ये हैं कुरुक्षेत्र से। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और हिमाक्ष। जेवरा हिसार से हैं वीरेंद्र भयाणा, सुरेंद्र भयाणा और शमशेर भयाणा। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पंवार। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं योगेश सारवा और आशा सारवा। रश्मि झरना भरत कुमार ये हैं राजकोट गुजरात से। एस एम जावेद हैं गुमला झारखंड से। मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे और मायरा सुरोशे हैं काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राजेश साबले पाटिल और इसके अलावा अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जो कि है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू का। पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, विनय पांडे, विनय शंकर पांडे और इनके साथी। छत्रपति संभाजी नगर सुरेवाड़ी से हैं सुषमा बोरगांवकर और सोहम बोरगांवकर। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा है बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू और मिलिंद कुमार साहू है सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और खुशी गोस्वामी है रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से। बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हैं हेमंत कुमार, प्रिया भारशंकर और समीक्षा भारशंकर। मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा है छत्तीसगढ़ पलारी से। मदनपुर छत्तीसगढ़ से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी ये हैं बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। अकरम हुसैन बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम और इनके साथी हैं नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी और अनुराग मोहन। बक्सर बिहार से हैं सरफुद्दीन अंसारी और डुमराव बिहार से हैं डब्लू अंसारी। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। रायसन करनाल से हैं रजनीश बत्रा, धर्मपाल बत्रा, शीला बत्रा। गिरा पलारी छत्तीसगढ़ से हैं वीरेंद्र आशीष साहू। पुराना तालाब डुमराम से है वलीउल्लाह अंसारी और बक्सर बिहार से हैं राज एस डी अंसारी। फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, पार्थ यांश चंदन यह है सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से। शाहू नगर यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर और प्रियांशी। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से हैं श्री कृष्ण बाठे और संदीप बाठे। नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से हैं अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण भाई सोनी और अहमद भाई बागबान। बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, यश मंसूरी। देखिए ये जो अब ये समझ नहीं आया कि इसमें कितने नाम लिखे गए हैं क्योंकि आपने एकदम लगातार लिख दिया है, बीच में कोई स्पेस नहीं दिया है ना ही कोई कॉमा लगाया, तो इस तरह से जब आप लिखते हैं तो पढ़ने में दिक्कत आती है, इसीलिए हर एक नाम के बाद आप कॉमा दें या फिर एंटर की को प्रेस करके अगली लाइन में नाम लिखें। इसके अलावा रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। नजफगढ़ नई दिल्ली से हैं सुमन, गौरव शर्मा और सौरभ शर्मा। सौराष्ट्र राजकोट से हैं प्रवीण भाई गुजराती, जगदीश भाई गुजराती और हिरेन भाई। नागर कोहरा से हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू और आराध्य साहू। नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा ये हैं बीड शहर महाराष्ट्र से। इंद्रराज और पार्थ है नागल से। रादौर से हैं राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा, साहिल पुजारा। संदीप मक्कड़ पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर। अभी यहाँ पे आपका कहाँ आपका नाम कहाँ आपके शहर का नाम समझ ही नहीं आया, बस जैसा आपने लिखा वैसा हमने पढ़ दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गैप दें और कोमा का ध्यान रखें। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम शबीर राही और मेहराज जहान, ये हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। मुरादाबाद से हैं मुकेश कश्यप और काजल सीमा। दबीरुल हसन, शबनम अनवार और मोहम्मद कलीम, ये हैं अमीर खुसरो रोड गंज डुंडवारा से। तो लीजिए, सही समय तक आने वाले जवाब हमने शामिल कर लिए हैं। और अब देखिए, एक साथ ही हमें भी मैसेज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब अगर आप सही से टाइप करेंगे तो ही तो सही से पढ़ा भी जाएगा, है ना। तो अब अगली बार जब आप हमें SMS करें तो अपनी टाइपिंग पर थोड़ा सा ध्यान दें ताकि हम उसको सही से उच्चारित कर सकें। और अब हम आपको ये संदेश सुनवा रहे हैं और फिर गीत।
1: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
2: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
1: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
2: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
1: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
2: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
1: आकाशवाणी
2: विश्वास की आवाज।

चलिए दोस्तों, अब आपके साथ साझा करते हैं आज के सवाल का जो जवाब था उससे संबंधित जानकारी। जी हाँ, आज हमने आपसे सवाल किया था कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, और उसका सही जवाब है बैरन द्वीप। ये द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यही भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ये भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सन 1787 में पहली बार ऐतिहासिक रूप से इसके विस्फोट को दर्ज किया गया था। लगभग 150 वर्षों तक शांत रहने के बाद ये फिर से 1991 में सक्रिय हुआ, और उसके बाद 1994-95 में, और फिर 2005 में, और फिर हाल ही के वर्षों में भी इसमें गतिविधियां दर्ज की गई। ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, यानी परतों में जमा लावा और राख से बना हुआ ज्वालामुखी है। ये द्वीप लगभग 3 किलोमीटर व्यास का है और यहाँ कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है, लेकिन समुद्री जीवन और कुछ वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ज्वालामुखी भारतीय और बर्मी टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों के कारण बना है। प्रकृति का ये अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप हमें सिखाता है कि धरती आज भी जीवंत है और निरंतर बदल रही है।

दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा में खेलों के महत्व की। जी हाँ, हरियाणा को आज पूरे देश में खिलाड़ियों की धरती के रूप में जाना जाता है। छोटे छोटे गांवों से निकलकर यहां के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। हरियाणा की पहचान केवल खेती और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों में भी ये राज्य लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश की कुल जनसंख्या में हरियाणा का हिस्सा बेशक से कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में हरियाणा का योगदान बेहद बड़ा है। हरियाणा की मिट्टी में मेहनत, अनुशासन और संघर्ष की भावना बसती है। यहाँ के युवा सुबह सुबह मैदानों में और अखाड़ों में अभ्यास करते दिखाई देते हैं। चाहे कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, कबड्डी हो, हॉकी या फिर एथलेटिक्स, हरियाणा ने हर खेल में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। हरियाणा ने देश को कई महान खिलाड़ी दिए हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान, और बजरंग पुनिया विश्व स्तर के पहलवान, विनेश फोगाट महिला कुश्ती की मजबूत पहचान है। दोस्तों ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया है। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। दोस्तों खेल केवल मनोरंजन नहीं है, यह हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। खेलों से हम अनुशासन सीखते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, टीम भावना जागृत होती है, धैर्य रखना सीखते हैं और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। आज के समय में जब बच्चे मोबाइल और स्क्रीन पर अधिक समय बिताते हैं, तब खेलों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हरियाणा सरकार जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि खेल नर्सरी योजना, महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देना, आधुनिक स्टेडियम और प्रशिक्षण। जैसे कि अब बात करते हैं खेल नर्सरी योजना की, जो कि राज्य में बच्चों को छोटी उम्र से प्रशिक्षण देने के लिए खेल नर्सरी शुरू की गई है। हरियाणा की बेटियां आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं। सरकार महिला खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करती है। कई जिलों में आधुनिक स्टेडियम, जिम और खेल विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को सम्मानित करने में भी देश के अग्रणी राज्यों में गिनी जाती है। ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार जो उनके लिए पुरस्कार होते हैं, स्वर्ण पदक के लिए 6 करोड़ रुपए, रजत पदक वालों को 4 करोड़ और कांस्य पदक वालों को 2.5 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाते हैं। अन्य प्रतियोगिताओं के लिए भी पुरस्कार, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। अब बात करते हैं कि हरियाणा सरकार कौन कौन से पुरस्कार प्रदान करती है। तो हरियाणा सरकार देती है भीम पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों खेल हमें केवल जीतना नहीं सिखाते, बल्कि हार से सीख कर आगे बढ़ना भी सिखाते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई पदक जीते, लेकिन खेल हर व्यक्ति को स्वस्थ, आत्मविश्वास और अनुशासित जरूर बनाते हैं। अगर परिवार और समाज बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करे, तो आने वाले समय में हरियाणा और भारत खेलों में नई ऊंचाइयां छू सकता है। हरियाणा की मिट्टी ने बार बार ये साबित किया है कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। तो चलिए हम भी युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करें और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है aapkibaat@gmail.com। और इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त आरती को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे का FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरांजलि।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये आकाशवाणी है,
3: हर पल आपके साथ।
2: समाचार हो या सदाबहार गीत,
3: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
2: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
3: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
2: आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

साथियों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है aapkibaat@gmail.com। और अब कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ ही दीजिए अपनी दोस्त आरती को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि का। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 9:45 हुए हैं। अब सुनिएगा अगला कार्यक्रम विविध भारती से।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घीम ज्याला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानेना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार विविध भारती से। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र पर स्वागत है आप सभी का। लीजिए आ गए हैं हम लेकर सजीव फोन इन कार्यक्रम। नाम है इसका नमस्ते कुरुक्षेत्र और संग है आरती आपकी रेडियो मित्र। तो कीजिए स्वीकार आरती का प्यार भरा नमस्कार। एक विनती है हमारे उन श्रोताओं से बारंबार जो करते हैं हमें फोन हर दिन हर बार, कृपया आज ले लीजिए थोड़ा सा विराम और शामिल होने दें नए दोस्तों के नाम। तो दोस्तों कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे बात करने के लिए और अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए कीजिएगा डायल हमारा दूरभाष नंबर 01744221322 यानी कि 01744221322। और पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत ऑन माय चॉइस।

0: हेलो,
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं।
1: कंवर सिंह बोल रहे जी, गांव अलीपुरा, जिला यमुनानगर।
0: अलीपुरा गांव से कंवर सिंह जी हमसे बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप?
1: ठीक हैं जी।
0: बढ़िया है, घर परिवार
1: सब मौज है जी, बढ़िया।
0: अच्छा, और अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: बस जी, घर में पड़े जी। सुबह जाते हैं खेत में, ठंड ठंड में काम करके आते हैं, एक दो घंटा, 6 बजे 5 बजे चले जाते हैं जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो 8-9 बजे घर आ जाते हैं।
0: ठीक, और बच्चे स्कूल जा रहे होंगे?
1: नहीं जी, बच्चे तो बड़े रहे जी।
0: अच्छा, तो आगे वो कहीं तो जाते होंगे काम पे, है ना?
1: हाँ जी, बस लड़का जा जी अपना दुकान कर रखे जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, गर्मी का मौसम है तो अपने आप को धूप से, गर्मी से बचाने के लिए वो भी सुबह के टाइम जल्दी ही जाते होंगे दुकान पर, उम्मीद है हम ऐसे करते
1: जी,
0: हैं
1: जी। 8 बजे 8:30 बजे चले जाएंगे।
0: ठीक ठीक, तो गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: ये संजोग फिल्म का है जी, यशोदा का नंदलाल ब्रिज का उजाला।
0: चलिए, आपकी पसंद को पूरा कर रहे हैं कॉल करने के लिए।
1: हाँ जी, हाँ।

0: जी लीजिए।
1: ये दयांगले से है जी, मंगराम सैनी
0: जी,
1: और ये जुगुड़ी से है जी, रणधीर बंगर जी।
0: हाँ जी,
1: ये बंसीलाल मोड़ी से।
0: चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके साथ साथ आपके साथ ही भी कार्यक्रम सुन रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। तो कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: हेलो।
4: हेलो, नमस्कार मैम।
3: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं।
4: जी, मेरा नाम पारस है मैम, और नीलोखेड़ी से बोल रहा हूँ। जी,
3: नीलोखेड़ी से पारस जी बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
4: जी बढ़िया मैम, आप भी ठीक हो मैम?
3: बिल्कुल बढ़िया जी। कितने समय बाद कॉल कर रहे हैं आज आप पारस जी?
4: मैंने कम से कम भी 2 साल में दोबारा कॉल किया जी।
3: 2 साल बाद, क्या बात, बड़े दिनों बाद आपको आकाशवाणी की याद आई। कहाँ थे इतने दिनों तक?
4: तो मैं रेगुलर सुनता हूँ
3: जी,
4: लेकिन कॉल, वो कहते हैं ना कि टाइम के बाद दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए।
3: जी जी, फिर भी काफी लंबा गैप दे दिया आपने।
4: जी मैम,
3: तो थोड़ा जल्दी, हमारे जो समय सीमा हमने रखी है ना एक कॉल से दूसरे कॉल के बीच, वो सिर्फ 15 दिन ही रखी है, 2 साल नहीं रखी है, तो थोड़ा सा जल्दी किया कीजिए, है ना। और गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
4: मैम, सुख के सब साथी दुख में ना कोई।
3: चलिए ठीक है, आपको हम आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। अच्छा, जैसे गर्मी का मौसम है तो आपने भी अपने घर के बाहर या छत पर पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का कुछ इंतजाम किया है कि नहीं?
4: जी जी मैम, बिल्कुल, मटके छोटे छोटे भर के रखे हुए
3: हैं
4: पानी के, और कुछ पक्षियों के लिए।
3: हाँ हाँ,
4: और बाहर एक गेट के बाहर एक हौदी बनाई है जैसे कोई आवारा पशुओं के लिए।
3: जी जी जी
4: जी,
3: अच्छा आपने बोला कि मटकी में रखा है पानी, तो मटकी से पक्षी कैसे पी सकते हैं मटके में पानी?
4: छोटे बड़े मटके होते हैं मैम, वो एक बने होते हैं कटोरे की तरह होते हैं।
3: अच्छा अच्छा,
4: छतों के ऊपर रखते हैं तो उसमें पक्षी आराम से पानी पी सकते हैं।
3: चलिए बहुत ही अच्छी बात है, और अब हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
4: थैंक यू मैम।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, लगता है हमारे साथी का कॉल कट हो गया है जो जिन्होंने अभी कॉल किया था। और खैर, इनकी पसंद का गीत हमने जान लिया है, वो ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों की संगत के बारे में। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि बच्चे घर से ज़्यादा किसकी बातें मानने लगे हैं? कभी दोस्तों की, कभी सोशल मीडिया की, और कभी उन लोगों की जिनके साथ वो रोज़ अपना समय बिता रहे हैं। और यही कारण है, और यूं ही कहा भी जाता है कि बच्चे बोलने से कम, देखने से ज़्यादा सीखते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की संगत के बारे में, कि हमें अपने बच्चों की संगत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में आगे बढ़े, अच्छे संस्कार सीखे और एक जिम्मेदार इंसान बने, लेकिन कई बार अनजाने में गलत संगत बच्चों को ऐसी राह पर ले जाती है जहां से उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। गलत संगत हमेशा अचानक दिखाई नहीं देती, ये धीरे धीरे बच्चों की आदतों में नजर आने लगती है। जैसे बच्चा पहले की तरह खुलकर अब बात नहीं करता, मोबाइल में जरूर से ज्यादा समय बिताने लगा है, पढ़ाई से मन हटाने लगा है, उसे गुस्सा जल्दी आने लगा है और घर वालों से वो दूरी बनाने लगा है। ये छोटे छोटे इशारे हैं जो बच्चों की, जो ये बताते हैं कि बच्चों को हमारी ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि क्या हम बच्चों पर सिर्फ निगरानी रखें? जी नहीं, हमें बच्चों पर सिर्फ निगरानी नहीं रखनी है, बल्कि उनके जीवन में अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखनी है। कई बार होता क्या है कि माता पिता अपनी व्यस्तता में बच्चों को समय नहीं दे पाते, और फिर बच्चा अपनी भावनाएं अपने दोस्तों से या फिर इंटरनेट पर साझा करने लगता है। ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों के साथ रोज़ कुछ समय बिताया जाए, उनके दोस्तों के बारे में जाना जाए, उनकी पसंद और परेशानियों को समझा जाए, और उन्हें ये महसूस कराना चाहिए कि घर जो है वो सबसे सुरक्षित स्थान है उन्हीं के लिए। अच्छी संगत सिर्फ दोस्त ही नहीं बनाती, बल्कि अच्छे विचार और अच्छा भविष्य भी बनाती है। दोस्तों, अगर बच्चे को सही मार्गदर्शन, प्यार और विश्वास मिले तो वह हर गलत प्रभाव से खुद को दूर रखना सीख सकता है। और याद रखिए, बच्चों को रोकने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें सही दिशा दिखाई जाए। तो हमें अपने बच्चों को समय देना होगा, उनकी संगत का ध्यान रखना होगा। जब अगर हमें लगता है कि हमारा बच्चा कुछ अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, जो व्यवहार अच्छा नहीं है, वो चाहे बड़ों के साथ हो, पड़ोसियों के साथ हो, छोटे भाई बहन के साथ हो, या किसी पालतू जानवर के साथ हो, किसी के भी साथ अगर हम बच्चे का कोई गलत व्यवहार महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब या तो वो बच्चा डरा हुआ है या फिर वो किसी गलत संगत में उलझा जा रहा है। तो हमें उसके जो भी दोस्त होते हैं उनके बारे में उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए कि आपके दोस्त कौन हैं, कहाँ वो रहते हैं, कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, यानी किस तरह के परिवार से वो संबंध रखते हैं, क्या उनकी पढ़ाई है, और वो आपके मित्र कहाँ बने, कैसे बने। ये सब चीज़ें हमें अपने बच्चों से पूछना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। और ये नहीं कि सवाल जवाब के तरीके में पूछा जाए, या हम उनसे किसी गलत मतलब जो हमारी वाणी होती है ना, उसके उच्चारण में, मतलब हम उनको डरा के, धमका के या डांट कर ऐसे ना पूछे, बल्कि प्यार से, एक दोस्ती वाली भावना से अगर जब हम उनसे बात करेंगे उनके दोस्तों के बारे में, तो वो ज़रूर हमसे सब बातें साझा करेंगे और गलत संगत में जाने से बचेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि मेरे साथ साथ मेरे माता पिता जो हैं वो मेरे दोस्तों पर भी ध्यान रख रहे हैं। तो इसीलिए वो हमेशा अच्छी संगत बनाने को ही प्रयासरत रहेंगे, उनको ये रहेगा कि मुझे सिर्फ अच्छे दोस्त बनाने हैं। तो चलिए अब हम गीत सुनते हैं फिल्म मन की आंखें से।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं।
1: जी, मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: जी, गाजियाबाद से मनोहर लाल जी हमसे बात कर रहे हैं। कितने समय बाद कॉल किया है आज आपने?
1: मुझे 5-6 महीने हो गए, कॉल
0: जी, और
1: लगाता था मगर मिलता नहीं था, मगर आज बड़ी मुश्किल में कॉल लगाया तो बड़ा अच्छा लग रहा।
0: जी, ये तो हमें फिर धन्यवाद करना चाहिए हमारे उन साथियों का जो हमारी बात मानते हैं और 15 दिन बाद हमें कॉल करते हैं, है ना? तब भी,
1: जी, ऐसे ही
0: क्योंकि
1: होना चाहिए, 15 दिन 1 महीने बाद कोई कॉल करे तो सभी का अपना नंबर आ जाता।
0: जी, और सभी को मौका मिलता है अपने विचार साझा करने का और अपनी पसंद का गीत सुनने का, है ना? तो
1: जी,
0: जी, आप कोई संदेश देना चाहेंगे श्रोताओं को अपनी तरफ से? गर्मी है या फिर जो सड़क के नियम होते हैं उनके बारे
1: मैं
0: में,
1: तो यही
0: किसी चीज के
1: कहना
0: बारे में?
1: चाहूंगा कि जैसे गर्म हवाएं चल रही हैं इस समय, तो
0: जी
1: हमारे पशु पक्षी हैं और आवारा डोगी हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए थोड़ा खाना दाना अपना रखें।
0: जी और गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: इस फिल्म का नाम है सोतन,
0: जी
1: जिंदगी प्यार करती।
0: चलिए ठीक है, आपकी पसंद को पूरा करते हैं, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कॉल करने के
1: जी
0: लिए
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

दोस्तों, अब बात करते हैं हरियाणा के उस शहर की जिसने कुछ ही वर्षों में विकास की नई मिसाल कायम की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की। आज गुरुग्राम केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे आधुनिक और तेजी से विकसित होने वाले शहरों में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस चमचमाते शहर का भी एक इतिहास रहा है और वो भी बहुत ही रोचक था। तो गुरुग्राम का जो इतिहास है वो ये है कि इसे पहले गुरुग्राम कहते थे, फिर इसका नाम गुड़गांव हुआ और फिर 2016 में इसका नाम फिर से गुरुग्राम कर दिया गया। कहा जाता है कि महाभारत काल में ये भूमि गुरु द्रोणाचार्य को उनके शिष्यों पांडवों और कौरवों द्वारा दक्षिणा में दी गई थी और इसी कारण इसका नाम गुरुग्राम पड़ा था, यानी कि गुरु का गांव। और कुछ दशक पहले गुरुग्राम एक शांत और साधारण क्षेत्र हुआ करता था जहां मुख्य रूप से खेती और ग्रामीण जीवन दिखाई देता था। लेकिन सन 1970 से 1980 के दशक के बाद यहां तेजी से विकास शुरू हुआ। जब बड़ी बड़ी कंपनीज ने यहां पर बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए तब गुरुग्राम धीरे धीरे आधुनिक शहर में बदलने लगा। दिल्ली के पास होना, एयरपोर्ट की नजदीकी और बेहतर सड़क संपर्क ने इसे व्यापार और उद्योग के लिए आदर्श स्थान बना दिया। आज गुरुग्राम भारत का बड़ा आईटी और कॉरपोरेट हब बन चुका है। यहाँ देश विदेश की अनेक मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस मौजूद हैं। यहाँ काम करने वाले लोग देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं और इसीलिए इसे मिनी इंडिया भी कहा जाने लगा है। गुरुग्राम की सबसे बड़ी ताकत इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जैसे दिल्ली मेट्रो, रैपिड मेट्रो, NH 48 हाईवे, IGI एयरपोर्ट की नजदीकी। इन सुविधाओं ने शहर को और अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बना दिया है। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े मॉल्स, अस्पताल, स्कूल, होटल और आधुनिक आवासीय क्षेत्र भी मौजूद है। दोस्तों, हर तेजी से बढ़ते शहर की तरह गुरुग्राम भी कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे कि भारी ट्रैफिक, बारिश में जलभराव, बढ़ता प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या का दबाव। ये चुनौतियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि विकास

0: के साथ बेहतर योजना और पर्यावरण संतुलन भी जरूरी है। सरकार और प्रशासन शहर को और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी योजनाएं, सड़क विस्तार, हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास, इन योजनाओं से आने वाले समय में गुरुग्राम और अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बन सकता है। दोस्तों, गुरुग्राम आज आधुनिक भारत की बदलती तस्वीर का प्रतीक बन चुका है। ये शहर हमें सिखाता है कि समय के साथ विकास कितना जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाता है कि विकास तभी सफल है जब वह पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता के साथ संतुलन बनाए रखे। एक छोटे से गुरु के गांव से लेकर मिलेनियम सिटी बनने तक का यह सफर वास्तव में प्रेरणादायक है। तो उम्मीद है आपको द मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के बारे में ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, देखते हैं कौन है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम बताएं।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते जी।
1: जी मैं सिरसा से बोल रही हूँ, अनुबंध नहीं सालू बंदर।
0: क्या बात, दो दो नाम है क्या आपके?
1: नहीं मैं
0: तो अच्छा, असली नाम क्या है आपका, अनु या शालू?
1: शालू।
0: अच्छा ठीक है, तो अनु क्यों निकला आपके मुंह से?
1: जी मैम बस।
0: अच्छा, अनु नाम ज्यादा पसंद है या फिर आप जी ज्यादा
1: नाम रख रखा है?
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: जी मैम बर्थडे का गीत सुना दीजिए।
0: बर्थडे का गीत आप सुनना चाहती हैं? किसका बर्थडे है आज?
1: जी मैम किसी का भी नहीं है, बस आने वाले टाइम में।
0: अच्छा, आने वाले समय में जन्मदिन है, आज नहीं है, लेकिन आपकी कॉल आज लगी है इसलिए आप पहले सुन लेना चाहती हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात है, और आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद
1: जी मैम, थैंक यू
0: जी।

0: राम राम जी, कैसे हैं आप?
1: गांव लिदेसर से पप्पूराम घाट बोलो बहन जी।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बहन जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल बढ़िया जी, मजे में हैं, गर्मी से बचे हुए हैं, है ना? और इस गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हैं?
1: बस बहन जी, मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ तारा बाबा जी कुटिया में।
0: अच्छा,
1: हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की।
0: ठीक ठीक, तो गर्मी से तो खुद को बचाते हैं ना आप?
1: हाँ बताते हैं जी, गर्मी बहुत ताबड़तोड़ पड़ रही है,
0: बहुत ज्यादा गर्मी है। खूब पानी पिए है ना, ताकि आप स्वस्थ रहें। और गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: आज मुझे सुना दीजिए जी, गंगा जमुना सरस्वती का, लता जी की आवाज है, साधन मेरा उस पार है, मिलने को दिल
0: दिखता। चलिए ठीक है, आपकी पसंद को पूरा कर रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है aapkibaat@gmail.com। और अब दीजिए अपनी दोस्त आरती को अनुमति कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध भारती से।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

पंकज उधास की आवाज में आपने ये गाना सुना और अब पेश है ये अगला गाना। आवाज है जुबिन नौटियाल और जोनिता गांधी की नवीन त्यागी के बोल हैं संदीप गोस्वामी का संगीत।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है कपिल कुमार ने, धुन बनाई है मानस मुखर्जी ने।

0: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग प्रोग्राम में अब पेश है दिलराज कौर की आवाज में मोहसिन नकवी का कलाम।

अंतरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जोनिता गांधी और शाश्वत सिंह का गाया हुआ साहिब का लिखा हुआ गाना समीरा कोपिकर का संगीत है।

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल होकर यूं टूलिया किसी ने।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
3: जाने
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार न

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास की आवाज में ये गाना, प्रोफेसर जे के सतपाल के बोल हैं और अर्जन दसवानी का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना अनजान का लिखा ये गाना श्याम शर्मा की धुन थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव का गाया हुआ ये गाना। रश्मि विराग ने लिखा है, पायल देव का संगीत है।

अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली और स्वामी शैलेश का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है राज सागर ने, धुन बनाई है पवन मुरादा मुरादपुरी ने।

रंग तरंग प्रोग्राम की आखिरी पेशकश श्रेया घोषाल, स्टेबिन बिन और पायल देव के साथ जावेद मोहसिन की आवाजें, सुनते हैं ये गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और उसके संरक्षण का प्रयास करें। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राम मोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सीमा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

यादों के महफिल प्रोग्राम का अगला गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सुनवा रहे हैं फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीत के बोल इंदिवर के लिखे हैं और संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म मिलन का ये गीत सुनिए, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे माँ और ममता फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गाना। लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लेकिन इस गीत से पहले ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली तनिया।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे यादगार फिल्म का गाना, जिसे लिखा था इंदी वीर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

हमारा संसार, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और आप सुनवा रहे हैं साजन की सहेली फिल्म का ये गाना। मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजें हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का और आवाजें हैं आशा।

ये था यादों की महफिल कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ आज का सुरीला सफर तय करने के लिए हाजिर हूँ मैं राजुल। सभी को सादर नमस्कार। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं वो इबारत जो हमारे श्रोता जो फेसबुक पर अभी नहीं पहुंच सके हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। तो आज की इबारत कुछ ऐसी है, इधर गर्मी का जलवा कम होने का नाम नहीं लेता और उधर जून का पूरा महीना ताक लगाए बैठा है। जब जी चाहे आंधी तूफान मचा देती है गर्मी, दो घड़ी भी चैन से नहीं बैठती। एसी कूलर कहाँ तक दिल बहलाएं, गर्मी दिन भर आग बरसाती है और रात में भी इसे नींद नहीं आती। छत पर चांदनी रात में भी चैन नहीं, हवा के झोंके भी गर्मी से बेचैन होकर छिप जाते हैं। गगरी सुराही बेअसर है, लाग बुलाने पर भी बादल की कोई खबर नहीं। गुस्से गर्मी के गुस्से से वो बेचारा भी डरता है, ये भी कोई बात है। धीरे धीरे प्यार से आए जाए तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, ये तो सरासर गर्मी की डॉनगिरी है। और आज की इबारत के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आए। कुछ श्रोता कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति मस्त है और वैसे आपके संदेश और गीतों का सुंदर समावेश कुछ इस तरह होता है जैसे जुगनू और रोशनी, जैसे शहद और मिठास। वैसे एक दो संदेशों में नाराजगी भी है कि फिर गर्मी की बात या फिर मौसम की शिकायत हो रही है। वहीं कुछ संदेश गर्मी की अधिकता से परेशानी के बारे में भी हैं। वैसे गर्मी के मौसम में गर्मी का असर तो दिखेगा ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के दिन तो मौसम के बदले मिजाज का जिक्र करना ही है क्योंकि बदलती जलवायु से प्रभावित होती जैव विविधता की ओर ध्यान देना ही देना है। प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और इसीलिए हरी और जैव विविधता से भरी पृथ्वी के लिए मिलकर संकल्प लेते हुए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। देखना तो ये है कि हमारी लिस्ट से आपकी लिस्ट कितनी मैच करती है। वैसे जैव विविधता की बात हो रही है तो आसपास कौन से कीट पतंगे या पंछियों की आमद आजकल बढ़ी हुई दिखती है, या कौन से ऐसे जीव हैं जो अब कम दिखने लगे हैं? अगर आपने गौर किया है तो बताइए हमें। संदेशों की बात करें तो संदेश है आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं और बधाई का, जिसे भेजा है हमारे एक श्रोता ने। बहुत बहुत बधाई। एक और बड़ा मजेदार संदेश है, हो जाते हैं शीत में सूरज दादा संत, गर्मी आते ही लगे जैसे क्रोधी कंत। क्या बात है। एक संदेश में हमारी श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से बेहाल इंसान जब पहली ठंडी हवा छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद उसे दिलासा दे रही हो। बारिश की पहली बूंद केवल धरती को ही नहीं बल्कि इंसान के मन को भी ठंडक देती है। थकान कम हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान लौट आ जाती है और फिर दिल फिर से नई उम्मीदों से भर जाता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है।
2: स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूँ।
1: श्री शाह ने सुरक्षा से जुड़े उभरते खतरों का उल्लेख किया। इनमें अवैध घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, जाली नोटों का चलन और हथियारों व ड्रग्स की तस्करी शामिल हैं। गृहमंत्री ने ज्यादा एकीकृत और व्यापक सुरक्षा ढांचे की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल का आह्वान किया। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और रेल संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद यह आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के आह्वान को व्यवहारिक रूप देते हुए कल चंडीगढ़ से दिल्ली तक का सफर शताब्दी ट्रेन से किया। मुख्यमंत्री इससे पहले भी अपने सरकारी बेड़े में गाड़ियों की संख्या कम कर अनावश्यक ईंधन खर्च को घटाने की पहल कर चुके हैं। अब ट्रेन से यात्रा करने का मकसद जनप्रतिनिधियों को संदेश देना है कि यदि जनप्रतिनिधि समय बदलाव को अपनाएं तो समाज में भी तेजी से सकारात्मक परिवर्तन आता है। जींद में कल जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कृत्रिम अंग वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकुश मिगलानी ने शिरकत की। समारोह के दौरान कुल 313 दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुसार कृत्रिम अंग और अत्याधुनिक उपकरण वितरित किए गए। समारोह के बाद मीडिया से विशेष बातचीत करते हुए वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी ने कहा,
3: आज हमने जो 32 लाख रुपए का सामान बढ़ा है, जो हमारे जिंद की सेक्टरी है रामजुलाली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई कहूंगा ज्यादा से ज्यादा गांव तक बात पहुंचनी चाहिए कि रेड क्रॉस संस्था है वो लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। अभी तो लोग सोचते हैं कि हम रक्तदान में ऐसे, वो पता होना चाहिए कि रेड क्रॉस जो हर एक के लिए एक समान खड़ी, विकलांगों तक गाँव तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात पहुंचाएं कि विकलांगों को कोई भी इशू है तो रेड क्रॉस संस्थाओं के साथ खड़ी है।
1: मीडिया ने बंद पड़े नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर सवाल किया तो मिगलानी ने स्पष्ट किया कि नशा खत्म करने के लिए सरकार और रेडक्रॉस दोनों बेहद गंभीर हैं। जल्द ही सभी नशा मुक्ति केंद्र पूरी सक्रियता से काम करने लगेंगे। सोनीपत जिले में राई स्थित हरियाणा की पहले खेल विश्वविद्यालय के तरणताल में कल देर शाम एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र की पहचान दिल्ली के गौतम नगर निवासी निशांत के रूप में हुई है, जो खेल विश्वविद्यालय में पीजी डिप्लोमा कर रहा था। बताया जा रहा है कि निशांत का शव तरणताल में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद निशांत को तुरंत सोनीपत के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात शव को अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया। सोनीपत पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें, हर किसी के लिए जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसे पलटने के लिए कार्रवाई करने का एक आह्वान है। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भाई जलवा शब्द से तो ये गाना हो गया, और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा कि तुरंत इस सवाल का जवाब भी दिया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। और बात अगर हो रही है जलवे की, तो गर्मी के जलवे को लेकर बहुत सारे संदेश भी हैं। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि स्कूल में अनसीन पैसेज का एक प्रश्न हुआ करता था, वो भी शायद कुछ सरल होता था। आपकी पहेली तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। वहीं से शुरू करिए, अपने आसपास से देखिए जरा कौन से कीट पतंगे बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे हैं या बहुत कम हो गए हैं। क्या हमारी जैव विविधता किस हद तक खतरे में है या कि सुरक्षित है, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कभी आंधी तूफान मचा देती है, चैन से बैठने भी नहीं देती, एसी कूलर से न दिल बहलता है, रात में न नींद, हवा पानी सब बेअसर, बादल भी नदारत, प्यार से आना चाहता पर मुश्किल है। और इसके साथ इन्होंने कई सारे गाने भी लिखे हैं जो शायद आज की लिस्ट से काफ़ी कुछ मैच भी कर जाए। एक श्रोता ने कहा है यहाँ वाराणसी में 45 डिग्री है, जो किया है वो भी तो यही मिलेगा। 2008 में जब कॉलेज जाता था तब 42 डिग्री बहुत ज़्यादा लगता था, पर कभी वो चुभा नहीं क्योंकि रोड के दोनों तरफ हरे भरे सघन वृक्ष होते थे जो जेठ के तपती दोपहर में भी जंगल और ठंड का काम करते थे। हर एक किलोमीटर पर एक हैंडपंप होता था जो आने जाने वालों के लिए अमृत समान होता था। महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्हें इस गर्मी में छांव भी मयस्सर नहीं, उन बेजुबानों के लिए जिनसे उनकी छांव छीन ली गई। सच में बहुत तेज जलती धूप में अभी भी कुछ लोग सड़क पर हैं, बस यही याद आता है। एक श्रोता कह रहे हैं ये गर्मी, ये गर्म रेती, ये पांव नाजुक, अभी न जाओ पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफ़र तो पूरा करना है, तो चलिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है, मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में, या घने जंगलों में, या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफ़र इन्हीं वादियों की याद में पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है तो आपकी कोई याद हो मीठी सी, अगर तो ज़रूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो इससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, दो घड़ी भी चैन नहीं आता है, ऐसे में गगरे सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को है पर गर्मी उसे डराने को है, जून जल्दी जल्दी जाए तो जुलाई प्यार से आएगा, इससे भला किसी का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिख दी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी तपिश में लिपटी है शाम और सिहरती चांदनी रात, बिखरा है फिजाओं में तेरी यादों का एहसास, धड़कनों को थाम कर जो बैठी है मेरी रूह, इस तड़प में भी घुली है तेरी मौजूदगी की छांव। तो अब अगला गाना, और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार कौन है। और हाँ, जैव विविधता वाला वो सवाल भी कि कौन से कीट पतंगे आजकल ज़्यादा दिख रहे हैं।

विस्तार से जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र कृष्ण मदन मोहन। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन की धुन, गेटवे ऑफ इंडिया, मधुबाला, भारत भूषण। और हमारे साथियों ने यह भी लिखा है कि जैव विविधता का पुरजोर असर प्रकृति पर और सभी प्राणियों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें अगर अभी से सुधार नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगी। और एक श्रोता ने अपनी एक यात्रा का भी वर्णन हमारे साथ साझा किया है। तीर्थन वैली की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और कलकल बहती तीर्थन नदी ने मन को गहरा सुकून दिया। वहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने शहर की भागदौड़ बुला दी। गांव के लोगों का अपनापन और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है। ये यात्रा केवल घूमने की नहीं बल्कि मन को शांति और नई ऊर्जा देने वाली एक अविस्मरणीय अनुभूति थी। वाकई ऐसी यात्राएं तो मन को एकदम ताजा कर देती हैं। और ताज़ा हो रहा है ये संदेश, गर्मी का मौसम प्रकृति के रूप रंग को पूरी तरह से बदल देता है। मौसम सिर्फ तापमान बढ़ने का समय ही नहीं बल्कि ये प्रकृति को संतुलित रखने की एक पूरी प्रक्रिया है। रास्ता चलते मुसाफिर को ठंडा पानी और पेड़ों की छांव ही सुकून दे सकती है। पक्षी भी दोपहर में घोंसलों में दुपक जाते हैं, सुबह शाम ये आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। दिन तपते हैं तो रातें उमस भरी होती हैं, लेकिन उमस भरी रातों में चांद की चांदनी और रात रानी की खुशबू कुछ राहत देती है। गर्मी क्रूर जरूर लगती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, पर यही गर्मी आने वाली बारिश का संकेत भी देती है। प्रकृति हर एक बदलाव के पीछे एक संतुलन छिपाए रहती है। बहुत सुंदर बात कही है आपने और इसी संतुलन को हमें संभाल कर रखना है। हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें की हैं। लिखते हैं कि गर्मी में ज्यादातर लोग परेशान तो होते हैं लेकिन इस मौसम का मजा बहुत है, कारण फलों के राजा रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद तो प्रचंड गर्मी में ही मिलता है। वाकई एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूँ। आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद सफल हो जाए। बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया। और हमारे कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है। तपती दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है। क्या बात है, पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर सुस्ताता है, दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है। कूलर की ठंडी सरगोशी, मटके का पानी प्यारा है, गर्मी चाहे जितनी चुभे बचपन इसमें भी न्यारा है। और छुट्टियों की इन्होंने बातें कही हैं और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं, यादों की मीठी थाती है, जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं, देखिए है आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। झूमता

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं, गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई ज़रूरी काम हो जाए, और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी, जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहाँ नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहाँ से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रही हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। आज 43 दिन में आज अच्छा इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में था, दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटे साइज के कबूतर भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंख वाले चींटियां, टिड्डे, भंवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं, जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे ज़रूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताज़ा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरे सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। यह कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीज़ें ज़रा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको, इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढलकर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

भाई चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छांव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छांव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से ज़रूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब, श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी है एक सवाल की, एक और सवाल है हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की सात चीज़ों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें ज़रूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आएं। जून महीने की गर्मी का जून महीने में सोचेंगे, इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है, जिया बेकरार है, बरसात के लिए कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुटकारा छुट्टी मिले। ओहो, एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज़्यादा चल रहा है, रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो, बाप रे। ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है, इसी बीच कुछ पंक्तियाँ याद आ गईं जिन्हें साझा कर रहा हूँ, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो वीर रस के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान यह है जून का महीना, हालांकि अभी जून आने में लगभग एक सप्ताह की देर है, फिर भी हाँ जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी ज़रूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफ़ी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1, 2, 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए, टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर, मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूँगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बापरे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गांव गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहाँ गाड़ी की ज़रूरत ना हो वहाँ पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट ना करना, और भी कई चीज़ें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में 1 या 2 पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना। गर्मी का मौसम निदाग काल कहा जाता है। यहाँ निदाग का शाब्दिक अर्थ तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है, मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो ज़रा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

0: तू है, मेरा सांस भी है तू, आवाज भी है तू, मेरी धड़कन में तेरा ही गीत है। नया खेल है ओ नया मेल है, आजा छेड़े तेरा ना रे, चुप चुप जाना रे।
1: फिल्म चार मीनार का ये गाना है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया आशा भोसले की आवाज़। विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है, गर्मियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूँ चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज़ धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहाँ पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, नीचे जिसके नीचे चटाई बिछाकर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियाँ बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियां, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं, और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जीवन से गायब हो गई हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियाँ तो आना ज़रूरी है, क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था, मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है, बचपन में सबसे ठंडक गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई, पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी ज़रूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की तपिश ने तो जैसे, जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती हैं, ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खोलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तो भी बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं, और परिंदे छाओं की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिए, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें, और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी ख़राब है या गर्मी बहुत ज़्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल, और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भटी हुई धरती का जो कलेजा है, वो कैसे छुपेगा हरियाली से। आपको बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना। ओहो, बड़ी शिकायत है इन्हें। असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हम सर्दियों में कितने इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक

फिल्म कादंबरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना, और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की कलाकार पर फिल्माया गया है, जो फिल्म में अनवर हुसैन की बहन बनी है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, और हो भी क्यों ना, सब सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है, और तरह तरह के पेय पदार्थ इन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश शायद प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहाँ बारिश हुई, जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज मौसम का क्या बदला नहीं लगता। और इस तरह के अंदाज के साथ क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जैव विविधता की अनुपस्थिति में ही हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में आज सुकून की पानी की बूंदें बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे ले रही हूँ इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
1: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
2: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 270,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
4: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईदुल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत। भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं, जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बारिश फिल्म का ये गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया। लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपाकली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती हैं। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउसवाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउसवाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी दीदी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, तो चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
0: जी।
1: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, फिर उन लोग को नाश्ता कराना। ये सब
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी जी, बेटा बड़ा है
0: जी
1: और गुड़िया है, वो छोटी है अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
1: जी मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का
0: अच्छा
1: शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है, आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टूटने का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज, ये सब।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी दीदी, मैं जीना है तो हंस के जियो
0: जी,
1: खाने दाल छिलू।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनार वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: दीदी
0: ट्यूशन है, बहुत अच्छी बात है ये। आप यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती है ना?
1: दीदी
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा अच्छा,
1: कहना चाहती हूँ जो लाइना आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब से प्यार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी दो दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी,
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
0: जी,
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी।
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी,
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर पे हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। इसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिससे नापा जाता है।
1: हाँ,
0: जी,
1: जी
0: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
0: जी,
1: चाहे कोई पतीला ले
0: जी,
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए 1 किलो नमक
0: जी,
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिसपे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए। हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा, अम्मा अब नहीं है लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
0: क्या बात है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई है बचपन से?
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया ये आएगा।
0: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलाम इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी इन्हें बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोग को लगा कि नहीं नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने
0: जी।
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी
0: जी।
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत ये त्रिवेणी सभी, मतलब हम लोग सच्ची सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात।
1: और हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना, पहले जो चलता था यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, हम कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे। तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी जी जी।
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे बचपन, बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही बात है।
1: ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है। हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे।
0: क्या बात है, गाने की महफिल।

0: लग जाते यानी आपके घर में।
1: हाँ, और सभी सिंगर है हमारे देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं
0: जी,
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है। मेरा बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ।
0: क्या बात है,
1: सबको इसका। हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 इयर्स की हूँ अभी
0: जी जी,
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है
0: जी,
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब फ्री है एकदम
0: जी।
1: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सबके लिए, कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, तो बड़ा अच्छा लगा।
1: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ही गाना आपको सुनवाते हैं।

0: समझ ले, मुँह से कहना मुश्किल है।
1: मैं बोली क्या जानू आंखों की ये बोली, हो बोली, हो बोली।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा गाना।
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी
0: जी,
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी?
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है, तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश
0: जी जी,
1: छाया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा
0: जी,
1: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें
0: जी।
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, आप हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा।
0: क्या बात,
1: किनारा फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम गुम जाएगा, तो
2: डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम, मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
2: मैम, मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
0: जी,
2: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए
0: जी।
2: और मेरी सास का नाम सुमन है
0: जी,
2: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल

0: है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है
1: जी, जी.
0: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा. ये है मेरा समस्त परिवार.
1: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा. अपने पतिदेव को हमारी तरफ से विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा. आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1-2-4 माय नेम इज लखन.
1: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना.

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी। आपका नाम क्या है
1: जी? मेरा नाम अशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी,
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश चंदेली।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, आपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी,
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो सहेली और हेलो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं
0: जी,
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी। तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियाँ मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादियाँ मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूं।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, छाया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है,
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा
0: जी,
1: प्रासंगिक कविता मराठी में लिखती हूँ
0: जी,
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और हाँ, तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियाँ सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी,
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
0: क्या बात, आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगी सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: उत्पन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फ़ोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फ़ोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 28670288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफ़र तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थीं। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

0: प्यार मिले।
1: राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान।

किया है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसकी हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में 1 रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी की जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए

अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नज़र संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नज़र अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

0: संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।
1: तो कितने

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरी बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूँगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा, लेकिन उससे पहले एक गुमशुदा सूचना। अतर सिंह पुत्र श्री रमन लाल गांव बोधनी सदर थाना पेहवा जिला कुरुक्षेत्र से 20 मई 2026 से लापता है। उनकी उम्र करीब 54 साल है और उनका रंग सांवला है, चेहरा लमूत्रा, काली आंखें, बाल सफ़ेद, कद 5 फुट 7 इंच और इनकी बाईं सहेली पर चोट का निशान है। काली पैंट और सफ़ेद चेकदार कमीज पहनी हुई है और पाँव में चप्पल पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना अगर प्राप्त हो तो कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें 7496980130। एक अन्य सूचना के अनुसार मानसी पुत्री सुरेश ग्राम छलौंदी तहसील लाडवा जिला कुरुक्षेत्र से 4 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 14 साल के करीब है और इनका जो कद है वो 5 फुट 5 इंच है। रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंखें काली, लंबे बाल, लोअर और टी शर्ट पहने हुए हैं। इनके बारे में यदि आपको कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें 9350127326। गुमशुदा सूचना समाप्त हुई।

आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी और शाम 6:20 पर गीता संदेश के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 34 से 37 तक की व्याख्या। प्रस्तुत रहेगी डॉक्टर विदुषा की।

शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे हमारा कार्यक्रम ग्राम संसार, और शाम 7:30 पर पेश किया जाएगा कार्यक्रम जय जवान। सुगम संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर, और रात 8 बजे आप सुनेंगे हमारे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

और अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए पुराने। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इजाजत का ये गीत।

फिल्म आए दिन बाहर के का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रंग से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का यह गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अशोका से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 MHz पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

श्रोताओ, कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज है 22 मई और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यानी जैव विविधता के मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र के 2015 के बाद के विकास एजेंडा के सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की इस व्यापक पहल में जैव विविधता का जो विषय है, सतत कृषि, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा, जल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सतत विकास, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, ज्ञान साझाकरण एवं क्षमता निर्माण, शहरी लचीलापन एवं अनुकूलन, सतत परिवहन, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, महासागर एवं समुद्र वन, स्वदेशी लोगों सहित संवेदनशील समूह और खाद्य सुरक्षा से जुड़े जो हितधारकों के लिए ये एक चिंता के विषय हैं। सतत विकास में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका को जो है इस दिन मान्यता दी गई थी। द वर्ल्ड वी वांट ए फ्यूचर फॉर ऑल के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। तो आइए अब कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे, सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
1: हम सब की अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
1: विश्वास की आवाज।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओ, हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में। जैव विविधता पृथ्वी पर सभी जो जीवन है उसकी नींव है, लेकिन दुनिया भर में यह अभूतपूर्व दर से ये नष्ट हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDB 2026 वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्रवाई। जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसे बदलने के लिए हम सभी से कार्रवाई करने का आह्वान ये करता है। जैव विविधता की रक्षा में घर के आसपास की जो कार्रवाई है वो शामिल है, जिसके सकारात्मक प्रभाव दूर दूर तक हम फैला सकते हैं। इसमें हम सबका सहयोग अपेक्षित है। 22 मई 2026 यानी आज के दिन दुनिया भर के लोग समुदायों, स्कूलों, ऑनलाइन माध्यमों और प्रकृति से जोड़ने वाली गतिविधियों के माध्यम से जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आज के दिन हम इकट्ठा होते हैं, और इसमें भाग लेने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर हम चाहें तो ऑनलाइन और समुदाय में गतिविधियां आयोजित करवा सकते हैं, कार्यक्रम और बातचीत का आयोजन करा सकते हैं, जिसमें जो है युवा वर्ग को या अनुभवी लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है। हैशटैग का उपयोग करके सोशल मीडिया और व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहानियां और अभियान सामग्री इस दिन हम साझा कर सकते हैं, ताकि जन जन तक जो ये अभियान है ये पहुंच सके। हमारे टूलकिट में मौजूद अभियान सामग्री का उपयोग करके अभियान को समर्थन हम दे सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और शहर और क्षेत्र जैव विविधता संबंधी प्रतिबद्धताओं और कार्यों को साझा करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कुकमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्यों को निर्देशित ये स्थानीय जो उत्सव है जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसे बदलने के लिए वैश्विक प्रयास

को ये एक एकजुट करेंगे, उस साथ ही उसको बढ़ावा देंगे। इस अभियान के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
1: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
0: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
1: ऐसा

श्रोताओ, हम चर्चा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में। इसका जो ये अभियान है, ये अभियान तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है, देखो, सीखो और जुड़ो, साथ ही कार्य करो और साझा करो। देखो और सीखो में अगर हम बात करें तो विश्व भर के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और अपने समुदायों में तथा स्थानीय स्तर पर उपयुक्त मंचों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के जो उपाय हैं खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नागरिकों को जैव विविधता पर सम्मेलन और जैव विविधता हानि को रोकने और उसे पलटने के लिए विश्वव्यापी योजना के रूप में जैव विविधता पर सम्मेलन और KMGBF के बारे में जानने या अपनी समझ को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय सरकारों के अलावा अन्य पक्षों और संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और योगदान भी शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओ, हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के जो अभियान है उसके चरणों के बारे में। तो अगला है, जुड़े और कार्रवाई करें। आम जनता को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आसपास या ऑनलाइन माध्यमों से अन्य लोगों द्वारा दी जा रही जो गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनसे जुड़े, उनमें भाग लें। इन प्रयासों का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से शासन के विभिन्न स्तरों पर डेटा संग्रह, ज्ञान का आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करना हो सकता है। और शेयर करना, सभी को अपने कार्यों और अनुभवों द्वारा दूसरों के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों, राष्ट्रीय प्रबंध नीति योजनाओं पर सूचना पत्र आयोजित करना, सामुदायिक सैर और बागवानी करना, फोटोग्राफी करना, चित्रकला प्रतियोगिताएं भी इस दिन आयोजित की जाती हैं। नागरिक के विज्ञान और स्थानीय गतिविधियों की वकालत करना तथा सूचना संग्रह बढ़ाना जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं और इनमें हर कोई भाग ले सकता है। दोस्तों, अब हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात शाम 6:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद शाम 6:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रोहतक से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के निवेशकों को हरियाणा में निवेश का निमंत्रण दिया। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई सीबीएसई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स ने भिवानी में छापेमारी कर एक व्यक्ति से 8 किलोग्राम 940 ग्राम हेरोइन बरामद की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत और जापान के बीच वर्षों से मजबूत राजनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी रही है। अगली पीढ़ी का औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जापान के साथ मिलकर लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं बन सकती हैं, जिससे बेहतर हरित और समृद्ध भविष्य का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित इंडो जापान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन में पहुंचे जापान के निवेशकों को हरियाणा के साथ भागीदारी करने का निमंत्रण देते हुए कहा कि देश की विभिन्न प्रमुख विकास परियोजनाओं में जापान की उन्नत तकनीक और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
2: जापान लेकर के आता है वो प्रेसिशन टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। जो भारत लेकर के आता है स्किल, टैलेंट, ग्रोथ एंड एस्पिरेशन, और हरियाणा इन दोनों के संगम पर खड़ा है। टेंस आज हरियाणा भारत में जापानी कंपनियों का सबसे बड़ा केंद्र बना है। लगभग 394 जैपनीज इंडस्ट्री एंड 600 से अधिक जैपनीज व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज हरियाणा में कार्यरत है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भारत जापान साझेदारी का सबसे जीवंत और सफल मॉडल किसी राज्य में दिखाई देता है तो वह हरियाणा है, जहां जापानी निवेश, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग ने विकास को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी नवाचार, निर्माण प्रौद्योगिकी, स्थिरता व भविष्य के लिए होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। बोर्ड ने कहा कि यह कदम अपनी अध्ययन योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने का हिस्सा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि तीसरी भाषा के लिए कक्षा 10 की कोई बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स की यूनिट ने भिवानी में छापेमारी कर रोहित नाम के एक व्यक्ति से 8 किलोग्राम 940 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 36 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसटीएफ अधिकारी प्रीतपाल सांगवान ने एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए दावा किया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह राज्य के इतिहास में अब तक की नशीले पदार्थों की दूसरी सबसे बड़ी रिकवरी है। उन्होंने बताया कि खुफिया सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिलने के बाद भिवानी में आरोपी के घर छापेमारी कर यह मादक पदार्थ बरामद किया गया।
3: कल हमारी एसटीएफ गुड़गांव की टीम सब इंस्पेक्टर विवेक के नेतृत्व में भिवानी मौजूद, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक आदमी यहाँ पे नशे की खेप लेके आया है। ऐसे भिवानी साहब से परमिशन लेके हमारी पार्टी ने वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुलाया और उसकी मौजूदगी में तलाशी ली गई, तो इंदिरा कॉलोनी भिवानी के रोहित के घर से लोहे की अलमारी से 8 किलो 940 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पूछताछ में अभी तक ये पता चला है ये जो का पदार्थ है ये पंजाब की साइड से लेके आता है और हरियाणा में सप्लाई करता है, तो इस पूरी चेन को ब्रश करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।
0: उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस नशा तस्करी के धंधे में आरोपी रोहित का सगा भाई भी संलिप्त है। पुलिस जांच के अनुसार रोहित का भाई पहले से ही नशा तस्करी के मामलों में पंजाब पुलिस की वांछित सूची में शामिल है और अदालत द्वारा उसे भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। उसके खिलाफ पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस को अंदेशा है कि इस रैकेट में कई अन्य स्थानीय डीलर, करियर और बड़े फाइनेंसर भी शामिल हो सकते हैं जो पर्दे के पीछे कर इस अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट को चला रहे हैं। हरियाणा पशुधन व डेयरी विभाग द्वारा पशुधन को भीषण गर्मी और लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा पशुधन व डेयरी विभाग के निदेशक डॉ. प्रेम सिंह ने हमारी संवाददाता को बताया कि विभाग के सभी अधिकारियों को पशुपालकों को लू से बचाने के उपायों के प्रति जागरूक करने की हिदायत की गई है।
4: सभी VLDS पशु चिकित्सक STOs एंड DD साहिबान को बताया गया है कि वो जितने भी हमारे पशु पालक हैं उनको निर्देशित करते रहें कि पशुओं को कैसे दूसरे गर्मी से बचाना है। पशुओं को छायादार वृक्ष के नीचे बांधे, शेड के नीचे रखें ताकि किसी प्रकार की डायरेक्ट हीट उनके शरीर के ऊपर ना पड़े। दूसरा, उनके अगर पंखे या कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं या स्प्रिंकल लगा सकते हैं, पशुओं को रेगुलर पानी देते रहें। पशुओं को एकदम सूखी थोड़ी ना खिलाएं, उसमें कुछ न कुछ लवण मिश्रण जरूर मिक्स करें, हरा चारा मिक्स करके खिलाएं।
0: स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर आमजन को लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। हमारे जींद संवाददाता को नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. सुमन कोहली ने जींद जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए एहतियाती कदमों की जानकारी दी।
5: विभाग की तरफ से जैसे ही एडवाइजरी जारी की गई, वार्ड में अलग से बेड हीट मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए चिन्हित कर दिए गए हैं। पूरे जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनमें ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी गई है। पेशेंट्स के लिए कूलर्स और जो संवेदनशील एरियाज हैं जैसे ICU है, इमरजेंसी है, उन डिपार्टमेंट्स में AC का इंतजाम कर दिया गया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के निवेशकों को हरियाणा में निवेश का निमंत्रण दिया। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई CBSE नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: FM 101.4 MHz पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं गीता संदेश।
7: गीता संदेश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। कल तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 31 से 33 तक श्लोकों की व्याख्या सुनी। 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृति के अनुसार ही ज्ञानवान और मूर्ख व्यक्ति व्यवहार करते हैं, किंतु ज्ञानवान की वृत्ति राग और द्वेष से रहित होती है। अब इसके बाद उसी प्रकरण से संबंधित 34वें श्लोक की ओर आज हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण का कथन है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागत द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर न वशम आगच्छेत तौ यस्य परिपंथिनौ। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग एवं द्वेष विद्यमान है। इन राग एवं द्वेष के वश में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही निष्काम कर्म अथवा भगवत प्राप्ति के मार्ग की सर्वोच्च बाधा हैं। इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष, अनुकूलता से राग और प्रतिकूलता से द्वेष, ये मनुष्य की सहज वृत्ति होती है। और इंद्रिय का विषय कब अपने लिए अनुकूल है और कब अपने लिए प्रतिकूल है, उसी से राग और द्वेष का संबंध है। जब तक संसार से माने हुए संबंधों में अहंता बुद्धि रहती है, तभी तक राग और द्वेष का अस्तित्व रहता है। राग और द्वेष वस्तुतः विषयों में ना होकर स्वयं मन और बुद्धि में ही रहते हैं। राग और द्वेष मन बुद्धि तथा इंद्रिय विषयों में प्रतीत होते हैं। राग एवं द्वेष से मुक्त होने के लिए साधक का कर्म जो है उसका शास्त्र सम्मत होना अपेक्षित है। वास्तव में राग और द्वेष अंतःकरण के विकार हैं। ये अंतःकरण का स्वभाव अथवा अंतःकरण का धर्म नहीं है, इसलिए इन्हें मिटाया जा सकता है। इन विकारों के वशीभूत होकर प्राणी विनाशशील इंद्रिय विषयों में सुख ढूंढने लगता है और पारमार्थिक सुख की ओर या पारमार्थिक कल्याण की ओर अग्रसर होने के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। जब साधक राग एवं द्वेष पर संयम करके शास्त्र सम्मत कर्म करता है, तब प्रकृति के वश में नहीं रहता। राग और द्वेष से मलिन अंतःकरण वाला व्यक्ति शास्त्र के अर्थ को भी अपने अनुसार व्याख्या करके मनमाने आचरण करने लगता है। इसके बाद 35वें श्लोक में श्री कृष्ण का कथन है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। यहाँ पर श्री कृष्ण का कथन है, जो स्वधर्म है उसे अच्छी प्रकार से आचरण लाया गया, पर धर्म की अपेक्षा में अपने कर्म के गुणरहित होने पर भी स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी उत्तम है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ पर स्वधर्म शब्द से अभिप्राय है कि अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुसार अपने लिए जो कर्तव्य कर्म निर्धारित है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति किसी भी स्थिति में जिस भी प्रकार के कर्म में है, स्वभाव के अनुसार अपने कर्म की तुलना दूसरे के साथ करके अपने को दूसरे की तुलना में हीन न माने, अपितु अपने कर्म को ही ईश्वर की आराधना बना दे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहना चाहते हैं कि गुण कर्म एवं स्वभाव से अर्जुन ने क्षत्रिय वृत्ति को चुना है और आज एक धर्म युद्ध का अवसर है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो न्याय की रक्षा के लिए युद्ध करे, और आज ऐसे समय में वो सन्यासियों की भिक्षा वृत्ति को क्यों अपनाना चाहता है। तो इस स्थिति में अर्जुन के लिए स्वधर्म है क्षत्रिय वृत्ति और उसका परधर्म है सन्यासी की वृत्ति। तो स्वजनों के मोहवश जिस भिक्षा वृत्ति का आश्रय लेने की बात अर्जुन कह रहा है, वह अर्जुन का गुण कर्म अथवा स्वभाव न होने से परधर्म है। स्वधर्म के पालन के मार्ग में कठोरता दिखाई दी तो परधर्म का आश्रय ले लेना उचित नहीं है। हम इस प्रकार के उदाहरण अपने आसपास भी कई स्थानों पर देख सकते हैं, जिन्होंने केवल अपना किसी एक विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपनी मान्यता, अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र ही दूसरों के कहने से बदल लिया। तो जो जीवन में स्वधर्म निर्धारित किया है, उस धर्म के पालन में यदि कष्ट भी आता है, तो धर्म के पालन में जो कष्ट सहन किया जाता है वो तप है, और उस तप को करना स्वधर्म का पोषण है। इसीलिए केवल कठिनता देखकर स्वधर्म को त्यागना नहीं चाहिए। इसके बाद 36वें श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है श्री कृष्ण के प्रति, अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। कि हे वृष्णिवंशी श्री कृष्ण, एक मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी बलपूर्वक लगाए गए के समान किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है? साधारणतः मनुष्य पाप और पुण्य का भेद जानता है और वो पाप करना नहीं चाहता, फिर भी जैसे किसी ने विवश किया हो, जैसे रोगी कुपथ्य का सेवन करे, इस प्रकार से कुछ ना कुछ पाप कर ही डालता है। ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर 37वें श्लोक में श्री कृष्ण देते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापापमा विद्धि एनमि वैरिणम। यह काम और यह क्रोध जो कि रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, महाश्नो बहुत खाने वाला, महापाप बड़ा पापी है, इसे ही तू इस विषय में वैरी जान। 34वें श्लोक में प्रत्येक इंद्रिय के विषय में स्थित राग और द्वेष को ही मनुष्य का परम शत्रु कहा गया है। राग एवं द्वेष का स्थूल रूप ही काम एवं क्रोध है। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, इसलिए काम ही वस्तुतः सर्वोच्च शत्रु है। यहाँ पर महाशनः जो पद प्रयोग हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ करें तो बहुत खाने वाला, और इसका भावार्थ है कि भोगों से तृप्त ना होने वाला। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में महाराज ययाति का दृष्टांत है, जिन्होंने दीर्घ काल तक राजसुख का भोग किया, दीर्घ काल तक इंद्रियों का विषयों का सेवन किया, किंतु देवयानी से एक दिन अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैंने इतने लंबे समय तक इंद्रियों को संतुष्ट किया परंतु अभी भी इन भोगों की तृप्ति नहीं हुई है और ये तो तृप्त होने वाले नहीं है, तो मैं मानव के कल्याण का जो पथ है, जो मोक्ष मार्ग है, मैं अब उसका आश्रय लेता हूँ। अब मैं इन विषयों का त्याग कर रहा हूँ कि अब जो है इनकी चरम सीमा हो गई। तो यहाँ पर महापापमा पद का अभिप्राय है कि भोगों में आसक्त करके पापों में प्रवृत्त कराने वाला शत्रु काम ही है। जो ये कहे कि प्रारब्ध के वश पर व्यक्ति कोई पाप करने पर विवश होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध तो पूर्वकृत कर्मों के भोग का नाम है। पाप में प्रवृत्ति का हेतु प्रारब्ध नहीं है। काम मन और बुद्धि की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भोगों में आसक्ति के द्वारा पाप कर्म करने के लिए विवश कर देता है। तो आज आपने गीता के 34वें श्लोक से 37 श्लोक पर्यंत व्याख्या सुनी। इसके बाद कल 38वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम अन्नदाता।

एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अन्नदाता।

0: कार्यक्रम अन्नदाता सुननीय सारे बाण भाइया ने चतुर्भाई की ओर तय राम राम। भाई खेत क्यार का नहीं, अगर हम देखें तो इन दिनों में भीषण गर्मी, जिसने कह देना चमकती तपती गर्मी, वह गर्मी पड़ रही है। और इस गर्मी के अंदर हम अपने खेत में काम कर सके हैं कि अगर हम अपने खेत को गहरी जुताई करके अगर नीचे की परत जो है वो पठा देंगे तो अंदर के जितने भी कीड़े हैं मकोड़े हैं वे ऊपर आ जाएंगे और कुछ तो गर्मी के कारण जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और कुछ जो है वो पक्षी उन्हें, क्योंकि भाई हानिकारक ये कीड़े जो हैं वो हमारी फसल को ख़राब करते हैं। जितना हम उनको उनके ऊपर जो है दवाइयों का खर्चा करेंगे तो वो खर्चा जो है वो हमारा बच जाएगा और हमारी फसल भी सही हो जाएगी। इसलिए इस टाइम पे हम अपना जो गर्मी के कारण जो है कि जितने भी खेत में से जो हमारे हानिकारक कीड़े हैं वो तो ख़त्म होंगे। इसके साथ साथ जिन भाइयों द्वारा खेत इस टाइम खाली हैं और भाई वो डेंचे की भी बिजाई कर सकें, इसके साथ साथ मूंग की भी बिजाई कर सकें और कुछ भाई जो है हरे चारे के लिए भी बिजाई कर रहे होंगे। और इसमें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने जो आने वाली जो फसल है, चाहे आप उसमें धान ले रहे हैं, चाहे आप उसमें सब्जियों की बिजाई कर रहे हैं, चाहे सब्जी लेनी है, तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपने अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप समय पर खेत की मिट्टी की जांच नहीं करवाओगे तो हम जो रासायनिक खादें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा इस्तेमाल रासायनिक खादों का करने से हमारे खेत की जो मिट्टी है वो खराब होती चली जाओगी, उसमें जो जैविक पदार्थ हैं वो कम होते चले जाओगे। इसलिए हमने जो अपना खेत की मिट्टी है उसकी जांच एक बार जरूर करवा लेनी चाहिए, हर साल ना करवा कर दूसरे साल तीसरे साल जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में जो रासायनिक खादें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम कर रहे हैं। खैर ये तो रही बात जो हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ भाई आजकल डिजिटल और नई तकनीक कृषि तकनीक भी आ रही है, क्योंकि आजकल हर जगह आप देख रहे हो कि कंप्यूटर का ज़माना है, चाहे वो बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे तक या फिर खेत खलियान है, चाहे वो सीमा पे हम अपना जो गोला बारूद बना रहे हैं या फिर कोई अपनी मिसाइल बना रहे हैं या फिर चांद पे जाना है या चांद तक नीचे उतरना है, तो हर जगह जो है हम एक नई तकनीक जिस नाम कहते हैं अपना कंप्यूटर का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और हम इसके साथ साथ जो पूर्णतया जो खेती है उस पे आप फसल की कटाई से लेकर और जो हमारा मंडी के भाव है वहाँ तक और खाद्य प्रसंस्करण जैसी जो डाउनस्ट्रीम गतिविधियाँ हैं उनमें जो है किसान भाई नए नए जो उत्पादन करके बाजार में बेच के सीधी जो सुविधाएं हैं वो ले सके, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जो कई तरह की जो क्रांतियां हैं वो चलती आ रही हैं और हर क्षेत्र में हम जो है अपनी पहचान बना रहे हैं, चाहे वो उत्पादन है चाहे वो बीज है, क्योंकि हर जगह जो है वो हम अपनी एक पहचान बना कर और किसान भाई जो है अपनी आय को दुगुना करते हुए जा रहे हैं। और आजकल की अगर हम बात करें जो नयापन जिस नाम कहते हैं नया परिवर्तन कह दो या उसको हम बदलाव कह दें, तो ये डिजिटल कृषि क्रांति का जो हम बात अब कर रहे हैं वो एक गवाह बन गई है, क्योंकि कृषि और खाद्य क्षेत्र जो है वो कई तरह की चुनौतियों, जैसे बढ़ती आबादी के कारण जो है भोजन की समस्या हमारे दौरा जाए, तो इसलिए भोजन की मांग बढ़ गई, और जब मांग बढ़ जाए तो पैदावार में बढ़ोतरी जो है वो किसान भाई किसी न किसी तरह वो करे हैं। और जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे उपजाऊ भूमि है, ताज़ा पानी है, तो इनकी जो उपलब्धता है वो थोड़ी सीमित सी हो जाए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि जो चूहा है वो भी तला बैठा जान ला रहा है, यानी कि पानी जो है नीचे वो चला गया है। जहाँ 20-30 फुट पर पानी मिल जाया कर था, आज 40-50 फुट के ऊपर जो है पानी हमने मिल गया है। और रही बात 2030 तक शून्य भूख वाली दुनिया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास और लक्ष्य को अगर हमने प्राप्त करने के लिए जो मौजूदा कृषि खाद्य प्रणाली है उसको ज़्यादा उत्पादक, यानी कि ज़्यादा पैदावार, टिकाऊ, कुशल और ऐसा हमने बदलाव करना है कि जिसके जिस हिसाब से डिजिटल कृषि में कृषि उत्पादन की जो लागत है, दक्षता है और बाजार की जो मंडी की जो संभावनाएं हैं उनमें हम विस्तार कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें, ताकि आर्थिक जो लाभ है वो हमने मिल जाए। और जब आर्थिक लाभ हमने मिलेगा तो ज़्यादा संपर्क हम करेंगे, और इसमें जो है समाज संस्कृति उसके ऊपर भी एक सकारात्मक जो प्रभाव है वो पड़ेगा, क्योंकि क्या करें ना कि भाई ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी कि जब तक मार दर कुछ होगा नहीं तो फिर वो है कि भाई हम कुछ भी नहीं कर पाऊंगे। नई नई तकनीक जो है वो हम आज अपना रहे हैं, चाहे वो दूध है, जूट है, दालों का उत्पादन है, क्योंकि आज हम पहले स्थान पर हैं, यानी कि दुनिया में हम पहले स्थान पर हैं, चाहे वो गेहूं है, चावल है, मूंगफली है, सब्जियां हैं, फल हैं, नए नए फल जो है आप देखने लाग रहे हो। पहले अमरूद छोटा होया करता, लेकिन आज आधा किलो किलो अमरूद भी आप देखने लाग रहे हो। और इसके साथ साथ अंगूर की अगर हम बात करें, अंगूर का पहले सिर्फ हरे रंग का अंगूर होया करता था, लेकिन वो काला अंगूर भी आ गया है। तो ये हमारी जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो नए नए आविष्कार करके, इसके साथ साथ कपास है, गन्ना उत्पादन है, इसमें भी हम दूसरे स्थान पर हैं दुनिया में, और मछली उत्पादन है, पशुधन है, मुर्गी पालन है, मसाले हैं, वृक्षारोपण है, और फसलों के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में हम एक दुनिया में उभर कर आ रहे हैं। और यही भी है कि जो हमारी कृषि है वो सबसे पहले अब गंभीर मुद्दा नहीं है, यानी कि छोटी जोत से किसान को भी अपना अपनी आय जो है वो मिल सके। और डिजिटल और नई कृषि पद्धतियां का जो उपयोग है वो खेत में, खलिहान में, चाहे वो पशुपालन है उसके पालन पोषण में, आप देख रहे हो कि कोलोन से भी हमने जो पशु वो हमने बना लिए कोलोन तकनीक से। और इसी तरह से जो नई पद्धतियां हैं उनके अंदर जो है हम जो प्रौद्योगिकी है, जो नया दृष्टिकोण है, यानी कि एक काम हम एक पहले एक ही ढर्रे से हम काम करते थे, लेकिन आज हम उसी काम को नई नई तकनीक से, पता नहीं हम एक तकनीक की कई तकनीक बनाकर और उससे उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। अगर नई तकनीकों का में अगर हम बात करें तो ड्रोन जो है उसका उसकी अगर हम मिसाल लें तो ड्रोन जो है हम इस समय बहुत ही कारगर साबित होता जा रहा है, क्योंकि ड्रोन एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा यंत्र है, क्योंकि उससे हम उसमें जो पर्यावरण संबंधी अगर हम बात करें, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हम हाथ से चलित हाथ जो मशीन होया करती उससे हम फुहारे विधि से अपने जो कीटनाशक दवाइयां हैं, चाहे वो रासायनिक दवाइयां हैं, तो उनका छिड़काव करते करते जब हम खेत में आया करते तो कई बार हवा एकदम पलटे थी और पलटने के बाद जो है उसमें से जो दवाई है वो छिड़काव करने वाले के मुंह के ऊपर आ जाती और जिसके कारण एक सांस के द्वारा उसके अगर रासायनिक दवाई अंदर चली गई तो उसने अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ड्रोन एक ऐसी तकनीक है उससे आप पूरे खेत में एक सरिया छिड़काव करोगे, चाहे वो आप दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल जो छिड़काव हम करके कर रहे हैं, या फिर रसायन जो हम छिड़क रहे हैं वो उनका एक सरिया से, चाहे वो कीड़े मार दवाई है चाहे वो रासायनिक खाद है, सब एक जैसा ही वो हमने खेत में हो जाएगा और जान माल जान के भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से भाई नई नई जो तकनीकें हैं वो हम अपने खेत क्यार में जो है अब लेके और अपनी आय को दुगना हम कर सकें। तो ये तो रही बात नई तकनीक के बारे में, और अब सुनते हैं एक संदेश, और ये संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के माध्यम से आप तक।
1: जलवायु परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सरकारों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। आम लोगों से लेकर इंडस्ट्रीज तक सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला, तेल और गैस का कम इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कई देश अब भी इन पुराने ईंधनों पर निर्भर है, लेकिन वे साफ ऊर्जा अपनाने की पहल कर सकते हैं। निजी क्षेत्र खासकर ऊर्जा फैक्ट्री और खेती से जुड़े व्यवसायों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे धरती को बचाने में मदद करें। क्या आप जानते हैं 191 देश पेरिस समझौते का हिस्सा हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके।
0: तो भाई कल के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो भाई कल जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उस कार्यक्रम में हम बातचीत अगर करें तो कल है 23 तारीख और 23 तारीख में हम आपके लिए के लेकर आएंगे एक चर्चा, और वो चर्चा कौन सी है, नींबू वर्गीय जो बागों की देखभाल के बारे में, और इसके साथ साथ हम नई उमंग और नई फसल के तहत हम बातचीत करेंगे हरे चारे के लिए गोवार की बिजाई, और इसके साथ साथ कृषि में प्राकृतिक खेती के लाभ। तो ये तो रही कल के कार्यक्रम की बात, और लगे हाथ मौसम की भी जानकारी ले ले, क्योंकि वही मौसम जरूरी है। गर्मी ज्यादा पड़ने लग रही है और गर्मी की कह रही है, मौसम की कह रहा है, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 28 डिग्री सेल्सियस, और कल का जो तापमान है अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो ये तो रही मौसम और कल के कार्यक्रम की बात। अब बात आवे क्या कि आपके मनोरंजन की, तो सुनते हैं ये रागनी, और उसके बाद हम जो आपको सुनाऊंगे ये जो रागनी है वो है उमेद सिंह टटोलिया और साथियों की आवाज में। दूध मलाई किसने नहीं अच्छा लगता, सबने अच्छा लग गया है, तो देखते हैं आज दूध मलाई में उमेद सिंह टटोलिया और साथी के कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।

तो ये तो सुनी हमने रागनी उम्मेद सिंह टिटोलिया और साथियों की आवाज में, और किस्सा था हीर रांझे का। और भाई खाद की अगर हम बात करें तो जो केंचुए की खाद है वो बहुत ही लाभदायक मानी गई है, लेकिन जो रासायनिक खादें हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, और जो केंचुआ है उसको जो कि हमारा मित्र जीव, मित्र कीड़ा जो है वो

आता है उसको धीरे धीरे हम समाप्त करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने खेत में से उसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। इसके अलावा हम अलग से केचुए की जो प्रजाति है, केचुए की जो नस्ल है, अच्छी नस्ल, उसको लेकर और हम केचुए की खाद जो है खेत में ना बना के हम बाहर बना के और फिर वही खाद अपने खेत में बखेरे तो पौधों के लिए एक वरदान मिल जाए उन्हें। तो भाई केचुए खाद के लाभ के क्या हैं? एक तो पौधों के लिए जो पोषक तत्व हैं, जो संतुलित मात्रा में है, वो मिल जाए। और इस खाद में पौधे की बढ़ाने वाले, पौध को जो बढ़ाने वाले हार्मोन है वो पाए जाए। और इस खाद का प्रयोग फसलों की जो ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार बढ़ाने के लिए और अच्छी गुणवत्ता की फसल उत्पादन करने के लिए भी हम केचुए की खाद का प्रयोग करें। और खाद के प्रयोग में मिट्टी में जो हानिकारक रसायन हैं जो पौधों के लिए, उनकी उपलब्धता जो है उसमें कमी आ जाए। मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या को ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी हम केचुए की खाद का प्रयोग करें, क्योंकि जितने जीवाणु मिट्टी में होंगे वही जीवाणु जो है हमारे पौधे की बढ़ोतरी करेंगे और उसी से उत्पादन हमारा बढ़ेगा। और मिट्टी को पानी में, पानी पकड़ने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और मिट्टी में पानी और जो हवा है उसका जो आना जाना है वो अच्छी तरह भी हो जाए, जिसके कारण जो है पौधों की जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह फैल जाए और पौधा अच्छा विकसित हो जाए। और केचुए की खाद में जो तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं बता? एक तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। और इसमें जो मुख्य तत्व है उसके अलावा जो है कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है, और लोहा, जस्त, तांबा, मैग्नीज, बोरोन, ये जो सूक्ष्म तत्व हैं भाई ये हमने ऐसे हाथ में लेने से नहीं दिखाई देते ये। और इन्हीं तत्वों के कारण जो है पौधा, कई बार आपने देखा होगा कि पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जा है, उसमें उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता। तो इसलिए इस तरह की जो खाद है, केचुए की खाद है, उसको अगर हम अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा होगा और बढ़ोतरी भी अच्छी होगी। अब एक और बातचीत कर ले जिन भाइयों ने नए बाग लगा रखे हैं। और बाग में इन दिनों में आप जानो हो कि हर तरफ जो गर्मी है वो गर्मी का असर हर जीव पे, इंसान पे, मानव पे, सब पे जो है देखने को हमने मिल रहा है। और छोटे जो फलदार पौधे हैं उनको गर्म हवा से बचाने, यानी कि लू से बचाने के जो तरीके हैं वो भी मर्द हो रहे हैं। और भाई क्योंकि लू, अगर पौधों को, पौधे लू के संपर्क में आ जाएंगे तो ऐसे में जो पौधा है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। और पौधे की जो पत्तियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जब पौधे की पत्तियां ही ख़त्म हो जाएंगी तो पौधा भोजन कैसे बनाएगा और वो अपना जीवन कैसे निर्वाह करेगा? क्योंकि जो मिट्टी है उसकी सतह के ऊपर पानी जो है वो हवा में उड़ता रहे, और ऐसे में गर्मी के मौसम में पौधों में जो पानी है उनकी ज़रूरत ज़्यादा हुआ है। लेकिन वाष्पीकरण, यानी कि जब धूप पड़ा है तो धूप, हवा और पानी जो है पौधे का वो खींच ले है, और जिसके कारण जो है पौधे में पानी की मात्रा नहीं रहती और पौधा जो है वो जल्दी मर जाए। इसलिए कई बार जब तेज गर्म हवाएं चल रहे हैं, यानी कि लू चल रहे हैं या फिर आंधी तूफान जो है चल रहे हैं, तो कमजोर जो पौधा है वो टूट के तड़पड़ जाएगा या उखड़ के नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे में जो

के लिए हमने पानी समय समय पर देते रहना है। कई बार हम दिन की गर्मी में पानी दे दे हैं और जिसके कारण जो है पौधे पे वो पानी असर उल्टा गिर दे है। इसलिए सुबह या फिर शाम को हमने अपने पौधों को पानी देना जरूरी पड़ जाए और बाग को साफ सुथरा रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे ठूठ है, गली सड़ी है, सूखी लाकड़ी है, यहाँ जब पड़ी रहेगी कोई कूड़ा कबाड़ या कोई गठड़ पड़ा रह जाए, लाकड़ी के टहने हैं टूटे वो पड़े रहे, तो ऐसे में दीमक भी लग जाएगा और जब दीमक लग जाए तो पौधे की जड़ों को वो ख़त्म कर दे है, समाप्त कर दे। तो सिंचाई जरूर करते रहें, पानी जरूर देना है और कोशिश ये करें कि जो नाली से दोनों लाइनों में पौधों के जो थावड़े हैं उन पर न्यारे न्यारे जोड़ दें, ताकि कम पानी से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। तो ये तो रहे नए पौधे, नए फलदार पौधों को हमने लू से कैसे बचाना है, और ये घड़ी भी इशारा कर रही है कि चतुर भाई कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है, भाइयों से ले अनुमति। तो अच्छा भाइयों, राम राम। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी।

हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अन्नदाता। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुननीय सारे बण भाइया ने चतुरु भाई की ओर से एक बार फिर राम राम। भाई कार्यक्रम में पहले कुछ संदेश, उसके बाद मनोरंजन और उसके बाद फिर करेंगे हम चर्चा। तो पहले संदेश, आइए सुनते हैं ये संदेश। और ये संदेश आकाशवाणी और यूनेस्को के माध्यम से आप तक।
1: SIDS और जलवायु परिवर्तन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों में सोख लिया है। इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है। कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं।

0: यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरीबा, मालदीव्स और वानुआतु जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं।
1: तो वही ये तो सुना संदेश, और अब मनोरंजन। तो आइए सुनते हैं ये रागनी। और वही ये रागनी वेद प्रकाश अनुपुरिया और साथियों की आवाज में।

तो वह रागनी हमने सुनी, और गायक कलाकार थे वेद प्रकाश अलूपुरिया और साथी। भाई बात करें जैव विविधता के बारे में, और आप देखो कि भाई हर दिन हम एक नए कार्यक्रम के रूप में मनावे हैं, तो आज हम एक जो आज का दिन है वो हम मना रहे हैं जैव विविधता के रूप में, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसको हम हर साल 29 मई को मनावे हैं, और इस दिन को हम जैव विविधता के रूप में मनावे हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो जैव है, जैव मतलब जो हमारी जीव है, जंतु हैं, पौधे हैं, उसमें विविधता है, यानी कि अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार, यानी कि उद्देश्य यही है, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, और इसके अलावा वायु। जो पेड़ पौधे की अगर हम बात करें तो उनका संरक्षण करना, उनको बचाना। हर साल हम देखें कि बहुत सारे जंगल जो हैं वो साफ कर दिए जा रहे हैं, और उन जंगलों के साफ करने से जो हमारे मित्र जीव हैं वो भी मारे जा रहे हैं, और एक कुदरत का और जीवों का जो एक सर्कल है, जो जिसको हम कह दें कि एक जीवन का, पौधों का और जीवों का जो जीवन है उसको अगर हम जोड़ के देखें तो एक पूरा का पूरा जो है एक चक्र जो है वो बना है। लेकिन अगर पौधे नहीं होंगे तो जीव नहीं होंगे, अगर जीव होंगे तो पौधे नहीं होंगे, तो कोई उनका कुदरत का जो संरचना है, कुदरत ने जो बनाई है, उसका कोई महत्व नहीं रह पाता। इसलिए जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूक होना जरूरी है, और क्योंकि दिन पर दिन बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, चाहे वो हमारी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, चाहे वो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, भाई वो दिन पे दिन समाप्त होती चली जा रही हैं, और इनकी रक्षा करना वो हमारा दायित्व है मानव का। क्योंकि पहले आप देखा करते कि भाई जो राजे महाराजा होया करते वो शिकार खेलया करते थे, शिकार खेलया करते जो जंगली जीव होया करते उनको वो मार दिया करते, और मार के जो है उस पर बल्ले से या उस पर खड़े कर फिर वो फोटो भी खिंचवाया करे थे और वो उसने लगाया करे थे। लेकिन आज वही प्रजातियां जो है, जिनको हम जो मारी गई प्रजातियां, वो विलुप्त होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, और आज का समय ऐसा है कि उनको बचाना बहुत ही जरूरी हो गया है। नहीं तो वही बात है कि हम जो बच्चों को किताबों में दिखाते हैं कि ये शेर है, ये चीता है, वो सिर्फ किताबों में ही रह जाएंगे, असली हमने नहीं दिखाई देंगे। इसलिए जो जीव है, जीवों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जंगल के अंदर से बिछड़ के और वो मानव उनमें आ जाए हैं, आदमियों की बस्तियों में आ जाए हैं, तो जो जंगल के अधिकारी हैं वो उनको पकड़ के या तो जंगल में छोड़ते हैं, या फिर जो चिड़ियाघर है उनके अंदर छोड़ते हैं, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनको असली देख सकें, किताबों के बजाय उनको असली देख सकें कि भाई ये चीता ऐसा होता है, शेर ऐसे होता है। और इसमें जो है हम एक बहुत सारी भूमिका हम मना सकते हैं अपने आप में। इसके अलावा ये जो जंगल है उनको भी हमने संरक्षण देना है, और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त तो होती जा रही हैं। जंगली आप देखो, पहले जाड़ होया करते, उन पर पील लाग गया करे थी, आज ना वो जाल रहे ना वो पील रही। आने वाली पीढ़ी को ये भी नहीं पता कि जाल के ऊपर पील लाग गया करे थी, और वो पील का जो स्वाद है वो कैसा होया करे था।
तो इसलिए बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं, उनको हमने उनका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी हो गया है। और वन जरूरी है जीवन चक्र के लिए, कुदरत के लिए, क्योंकि अगर वन नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, तो बहुत सारी हमने दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। अगर जंगल हैं तो हमने बारिश भी मिल है, अगर जंगल नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं मिलेगी। इसलिए जंगलों का बचाव करना बहुत ही जरूरी हो गया है। और वही इसके साथ साथ अगर हम बात करें जीवन में अनुशासन की, बहुत जरूरी है अनुशासन, क्योंकि अगर यही अनुशासन अगर सेना में ना हो तो सेना में एक अलग ही तरह की पहचान बनेगी। इसलिए अनुशासन जो है जरूरी है, और यह अनुशासन हमने बचपन से ही मिलता है। स्कूल में जावे हैं शुरू में तो अनुशासन में हमने पढ़ना है, मास्टर जी पढ़ावेंगे, सवेरे प्रार्थना होएगी, फिर घंटी लगेगी, फिर साइंस वाली मास्टर आएंगे, फिर साइंस इंग्लिश वाली मास्टरनी आएगी, और फिर यानी कि एक हम बच्चे जो अनुशासन में है वो वहीं रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जब क्लास में मास्टर जी नहीं होते तो क्या हुड़दंग मचता है, क्योंकि वहाँ अनुशासन नहीं रहता। तो इसलिए जीवन के हर क्षेत्र के अंदर अनुशासन बहुत जरूरी है, चाहे वो बाल्यकाल अवस्था है, चाहे वो जवानी है, चाहे वो बुढ़ापा है। अब नींव जो है वो हमारी बचपन से ही पड़ती है, इसलिए जो अनुशासन, जो हमने शिक्षाएं जो बचपन में हम ले हैं, वो शिक्षाएं जो है हमने ता उम्र जो है अपने जीवन के अंदर यापन करनी पड़ जाए। किसी ने कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये बात बहुत सटीक बैठती है कि अगर आप अनुशासन में रहोगे तो आपका जीवन एक बहुत ही अच्छा जीवन जो है वो आप जी सकते हैं। अगर आप अनुशासन में नहीं हैं, समय पर नहीं उठना, अपना काम लेट करना, या शिक्षा अगर हम ले रहे हैं आज का काम कल पे छोड़ना, और इस तरह की जो ढीलम ढाल की जो प्रवृत्ति है जब हमारे अंदर आ जाती है तो उसी तरह से उसका परिणाम भी हमने मिला है। इसलिए अनुशासन हमारे जीवन में सर्वोपरि होना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक सेना का जवान जो है वो घर में भी कैसे अपने पूरे घर को अनुशासित रखता है, क्योंकि उसके अंदर जो अनुशासन की भावनाएं जो है, अनुशासन जो है उसके अंदर एक डिसिप्लिन जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, वो उसके जीवन के अंदर एक पौधा बन के एक पेड़ बन गया, और यही अनुशासन जो है उसके जीवन को बहुत अच्छा जीवन जो है वो बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम अनुशासन में नहीं रहते, चाहे वो सड़क पे भी अनुशासन क्यों ना हो, वहाँ हमारी गाड़ियों के चलाने से ही पता लग जाता है कि हमारे अंदर अनुशासन है या नहीं है। सड़क के ऊपर फुटबॉल की तरह से, फुटबॉल के मैदान में जैसे हम खिलाड़ी फुटबॉल, उसी तरह से जो गाड़ी चलाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को खतरे में डालते हैं और दूसरे के जीवन को भी खतरे में डाल रहा है। तो इसलिए भाई अपने जीवन के अंदर अनुशासन का महत्व जरूरी है, आपको भी समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए, और अपने बच्चों में भी हमने अनुशासन का महत्व समझाना चाहिए। तो ये तो रही अनुशासन के बारे में, और अब बात कर लें मनोरंजन की। तो आइए सुनते हैं दुनिया का जो मेला है उस मेले के अंदर क्या क्या हुआ है, तो आइए सुनते हैं इस हरियाणवी फिल्म के गीत में।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
1: है
0: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

और भैया इस गीत के गिले जो है आज का कार्यक्रम ग्राम संसार होया समाप्त। चतुर्भाई ने दो इजाजत, सबण भाई ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय जवान।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म मोहरा का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए मेहदी हसन को।

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
1: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
1: विश्वास की आवाज।
2: अब आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खां को।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आप सबका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नींद का महत्व विषय के बारे में। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का अहम हिस्सा है जो हमें आराम भी देती है, हमें तरोताजा भी रखती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन दवा है। जब भी नींद आती है तो उसके बाद आपका जो शरीर है वो स्फूर्ति से भर जाता है। नींद आनी बेहद जरूरी है। कतिल शिफाई साहब ने नींद के बारे में क्या खूब लिखा है कि हमें भी नींद आ ही जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोतो, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नींद का महत्व विषय पर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नींद हमारे लिए क्यों जरूरी होती है, क्या है आखिर इसमें जो हमारे लिए इतनी आवश्यक है। हमें नींद की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर हमें पर्याप्त आराम पाने में बहुत सारी बाधाओं का सामना

करना पड़ता है। हम काम और अन्य जिम्मेदारियों के कारण नींद को हालांकि बहुत बार नज़रअंदाज भी कर देते हैं, कभी कभी नींद आना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि बीमारी के दौरान, बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारियों के दौरान। लेकिन कई बार मानसिक तनाव ही हमारी बेचैनी का कारण होता है। जब हम चिंता, अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपनी जो है नींद में खलल महसूस करते हैं, तो वास्तव में जो हमारे लक्षण हैं उस समय और ज़्यादा बिगड़ने वाले होते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो जिससे हमारी जो नींद है वो बेहतर बन सकती है। नींद का भी अपना एक स्वास्थ्य होता है। एक तिहाई से अधिक जो लोग हैं वो नियमित रूप से पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं, आज की ये सच्चाई है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से सोते हैं और उनके जो स्वास्थ्य पर इस अच्छे से सोने का बेहतर प्रभाव होता है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, तनाव भरी जिंदगी में अच्छी नींद ले पाना एक बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन जो ये नींद ले पाते हैं वह वास्तव में काबिल तारीफ है, किस तरह से उन्होंने अपना जो है लाइफस्टाइल बनाया होगा। जब हम सोते हैं तो हमें जो है अच्छे अच्छे सपने आते हैं, ख्वाब आते हैं। उठो ये मंजरे शबे ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं है ख्वाब देखने के लिए। कितनी अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो नींद के लिए ज़रूरी हैं। कई बार तो जो बहुत अच्छा सा बिस्तर होता है उसमें भी नींद नहीं आती, लेकिन जो मजदूर खेतों में काम करते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं, वो कई बार खेतों में काम करते करते वहीं कच्ची मिट्टी पर, घास पर या पत्थरों के बीच में भी सो जाते हैं। नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: Nee, Roberta.
1: तो हम बात कर रहे थे नींद के बारे में। नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद जरूरी है और आपके मन और शरीर को आराम करने, तरोताजा होने, पाचन क्रिया को संतुलित करने और ठीक होने और जानकारी को समझने के लिए समय चाहिए होता है और नींद ये अवसर आपको प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि पर्याप्त नींद ना लेना, खासकर लगातार आपके कार्य करने की जो क्षमता है उसको ये प्रभावित करती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन का कहना है कि स्वस्थ वयस्क को स्वस्थ रहने के लिए रात भर में कम से कम 7 घंटे की नींद की जरूरत होती है। युवा वयस्कों, बीमार लोगों और नींद की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए प्रति रात 9 घंटे की नींद की सलाह दी जाती है ताकि उनका जो स्वास्थ्य हो फिर से बहाल हो सके। ये भी कहा जाता है कि 1/3 से अधिक जो लोग हैं वो नियमित रूप से नींद नहीं ले रहे हैं। जब भी कोई ऐसी समस्या आती है या कोई महामारी आती है, जैसे पिछले सालों आपने कोविड महामारी के बारे में भी आपने जाना, उसको आपने उससे जूझा, उसने भी हमारी जो नींद की जो गुणवत्ता है वो सारी बिगाड़ के रखती थी। स्लीप फाउंडेशन का कहना है कि तनावपूर्ण घटनाएं, धीमी तरंग वाली नींद में कमी और जागने की प्रवृत्ति में वृद्धि का कारण बनती है। रक्त में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल से अधिक मात्रा नींद को बाधित करती है। जब आपके कोर्टिसोल और मेलाटोनिन का जो स्तर है वो ठीक से घटता बढ़ता नहीं है तो आप थका हुआ और बेचैन महसूस करते हैं और दिन में ठीक से काम करने में असमर्थ होते हैं और रात में पर्याप्त नींद नहीं ले पाते। असल में ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। आप थका हुआ महसूस इसलिए करते हैं क्योंकि आपने नींद अच्छे से नहीं ली और नींद अच्छे से नहीं ली इसी कारण से आप थका हुआ महसूस करते हैं। तो जब आप नींद अच्छे से लेंगे तो आपका जो शरीर है वो स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। अब आइए कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोता, हम बात कर रहे थे नींद के बारे में। तो अगर हम बात करें कि नींद में सुधार से जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य वो सुधरता है, अपर्याप्त नींद का जो संबंध है वो बार बार होने वाले मानसिक तनाव की जो संभावना है उससे सीधा जुड़ा हुआ है। इसमें यह भी बताया गया है कि प्रति रात 6 घंटे से कम नींद लेने वाले जो लोग हैं उनका जो मानसिक तनाव का जो अनुभव करने की संभावना है वो 2.5 गुना बढ़ जाती है। नींद और मानसिक स्वास्थ्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। नींद की जो समस्याएं हैं वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनका कारण बनती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं नींद की समस्याओं के कारण ही पैदा होती हैं। नींद की जो गुणवत्ता है उसके ऊपर भी ये काफी कुछ निर्भर करता है। नींद की खराब जो गुणवत्ता से मुकाबला करने की क्षमता और भावनात्मक नियंत्रण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण नींद के बिना जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम तेजी से प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। दूसरी ओर स्वस्थ नींद अनुकूल प्रक्रियाओं को ठीक करती है। इसका मतलब ये कि नींद सिर्फ एक जरूरत ही नहीं बल्कि ये तनाव से निपटने का एक तरीका भी है। शरीर को पर्याप्त आराम देने से आप दुनिया के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया दे पाएंगे, खासकर तब जब आप अत्यधिक उत्तेजित हो, मुश्किलों का सामना कर रहे हो या बीमारी के दोबारा होने के कारणों से जूझ रहे हो। कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आराम से सोएं ताकि आप आराम से उठें और जब उठें तो पूरी स्फूर्ति के साथ आप उठें। राहत इंदौरी साहब ने नींद के बारे में क्या खूब लिखा है, ये जरूरी है कि आंखों का भ्रम कायम रहे, नींद रखो न रखो ख्वाब मियारी रखो। लेकिन दोस्तों ख्वाब तभी आएंगे जब आपको नींद आएगी। तो अच्छी नींद के लिए आप कुछ चीज़ों का जो है आप फेर बदल करके अच्छी नींद प्राप्त कर सकते हैं। यानी सबसे जो

नींद का दुश्मन है वो है हमारा स्क्रीन टाइम, यानी हम मोबाइल लेकर लेट जाते हैं, उसको चेक करने में लग जाते हैं। कई बार तो फिजूल की चीज़ों में हम टाइम वेस्ट करते हैं, यानी रील देखने लग जाते हैं और उनको स्क्रॉल करने में ही पूरा टाइम बिता देते हैं। हालांकि उसमें से हमने कुछ नहीं देखना होता है, बस स्क्रॉलिंग चलती रहती है, लेकिन वो जो स्क्रीन हमारी आंखों को तंग करती है, वो बहुत देर तक नींद हमें आने नहीं देती। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओं, आपका जो शरीर है वो अलग अलग हार्मोन बनाता है, दिन के अलग अलग समय पर ये पैटर्न अलग होता है। ये आपके नींद के पैटर्न या आपकी सर्कैडियन क्लॉक से संबंध ये रखता है। सुबह के समय आपके आपका जो शरीर है वो ऐसे हार्मोन जारी करता है जो सतर्कता को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि कार्टिसोल जो आपको जागने में मदद करता है। अन्य जो हार्मोनों का 24 घंटे का जो पैटर्न होता है जो आपके जीवन भर बदलता रहता है, उदाहरण के लिए बच्चों में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और स्रावित करने वाला जो हार्मोन है वो रात में स्पंदनों के रूप में होता है और यौवन के करीब आने पर ये स्पंदन बढ़ते जाते हैं। शरीर में वसा के पाचन का जो तरीका है वो विभिन्न चक्रीय घड़ियों पर निर्भर करता है, जिनमें यकृत, वसा और मांसपेशियां शामिल होती है। उदाहरण के लिए चक्रीय घड़ियां ये सुनिश्चित करती हैं कि आपका जो यकृत है वो उचित समय पर वसा को पचाने के लिए तैयार है, और ये जो पचाने का जो कार्य होता है वो जब आप सोते हैं उस समय बहुत अच्छे से होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद न लेने से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। आपके शरीर में भूख को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोनियम है जैसे कि लेप्टिन और ग्रेलिन का जो स्तर है वो अधिक हो जाता है, इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया करने में क्षमता की आप में कमी आ जाती है। भोजन का बढ़ा हुआ सेवन, विशेषकर वसायुक्त और मीठे और नमकीन खाद्य पदार्थों का जो सेवन है, शारीरिक गतिविधियों में कमी आ जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर आप गुणवत्तापूर्ण नींद अगर नहीं लेते तो आपका जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे करके बिगड़ने लगता है। कई बार हम किसी के तसव्वुर में इतने खोए होते हैं कि आंखों के सामने ऐसा लगता है कि जैसे हम जागते हुए भी कुछ सपने ले रहे हैं और यानी किसी दूसरी जगह पर जागते जागते भी पहुंच जाते हैं। शाम से उनके तसव्वुर का नशा इतना था, नींद आई है तो आंखों ने बुरा माना है। अब आइए कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

कुछ बातें कुछ गीत FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की

0: दृढ़ बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरास और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: व्यवस्था के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमी की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था, ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सबसे पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: सुबारे।

और अब लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं मुकेश। फिल्म का नाम है संगम। रचना शैलेंद्र की और तर्ज शंकर जयकिशन की।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश रोशन का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजी फिल्म ताजमहल के लिए।

0: समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कौन के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घेन ज्याला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी इसका नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर कर

बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज का चांदनी रात कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ आप सबका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको वो सभी गीत सुनवाने की कोशिश करेंगे जिनकी फरमाइश आपने हम तक लिखकर भेजी है व्हाट्सएप संदेशों के हवाले से। तो शुरू कर रहे हैं आज का ये कार्यक्रम। सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अनीता। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास से ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर, मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हिना कौसर। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़ के गीत सुनना चाहते हैं। और इस गीत के लिए फरमाइश आई है मुकम पोस्ट फुल जिचोली तालुका पंडरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो आप सभी की पसंद पर फिल्म अनीता का यह गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म संबंध से हम आपको सुना रहे हैं और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित्त आहूजा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल का। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्षा मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। और ये संदेश हमारे पास आया है लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा और जीवन सिंह बुक। करणवीर हाउस से भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन और अभिजोत। मालियान साधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जेवीएम जैन। तो आप सभी के पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंगूर का ये गीत। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी मनोहर भाई बागड़ी प्रभुलाल बागड़ी नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और फुंदनी भाई बागड़ी। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी रजिया बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर सदानंद मंदुरकर कुमार गौरव मंदुरकर आरव और अर्पिता। मेहरनगर उमरखेड़े महाराष्ट्र से अभिजीत गब्बाणकर राही श्रीमती सरिता गब्बाणकर प्राणिता सिद्धांत गब्बाणकर प्रिंस एकांश गब्बाणकर टुकटुक गब्बाणकर। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशान छीपा और पूजा परिहार। गांव हरूडी चांडील झारखंड से तुलसीदास महतो कल्पना महतो मनोरमा महतो मनमोहिनी महतो दीनबंधु महतो और उनके परिवार के सभी सदस्य। गंजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी जहीरा बेगम अंसारी अयान अंसारी उस्मान यासीन और शमशुल कमर राही। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का ये संदेश हमारे पास पहुंचे हैं। तो आप सभी की पसंद पर फिल्म अंगूर का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओ, कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है आए दिन बहार के। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सकपाल, आशा सकपाल, सोनिया सकपाल और विशाल सकपाल। पुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से मास्टर वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, जुनैद, जुबैर, मुकराम, नौमन, फुरकान, जाकिर और मोहम्मद फाजिल। नई बस्ती गंजुंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तोशीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। और ये संदेश हमारे पास से पहुंचा है। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ कोडानी, अर्चना ताई गोडाने, हीरवान शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोडाने। और मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। तो आप सभी के पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये संदेश भेजा है, गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जिया और दर्शन भाई, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शाहनाज अब्बासी नवेद हसन अब्बासी रसीद वारसी सुहेल हसन अब्बासी यशफ अब्बासी अनम अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा अंकुश अरोड़ा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी बब्बू और डब्बू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशु तासु अर्णव आनंद सत्यम आनंद, बोहड़ा गाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल गणेशलाल जायसवाल शुभ प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गा जायसवाल। तो आप सभी के पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सितारा से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये संदेश आया है गांव सीलीकला जिला यमुनानगर हरियाणा से। जयसिंह काम्बोज, विजयंत काम्बोज, रिदम निश्चय सिंह काम्बोज, जयपाल धीमान और खुर्शीद चमरौड़ी। गांव अडाघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। जमशेदपुर झारखंड से सुपाही साई गांव से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा, कुमारी रेशमा, कुमारी दीपाली और देवेन जी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया का संदेश हमारे पास आया है। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। तालुका नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, चंद्रकला पोपलघट, रविदास पोपलघट। बीर शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्रे, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टाउल और पीबी कुलते। तो आप सभी की पसंद पर फिल्म सितारा का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सच्चा झूठा से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर तेजस्वी चौहान माई इंदुरकर बेबी शौर्या श्रेयस अंकिता और अनिकेत चौहान सी आर कांबड़े करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े हैं जवाहर नगर दुर्ग से। और आप हैं ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े वकील वाल्मीक धाड़े नीनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े। ये संदेश हमारे पास से आया है। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान कृष्ण धीमान राहुल धीमान कोमल धीमान शुभम धीमान और आंचल कुंच। अरविंद धीमान चिराग धीमान रजत धीमान और राजेश धीमान। और ये संदेश हमारे पास आया है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल संगीता रानी जिंदल पप्पू महक खुश दिल सुनीता रानी जिंदल पप्पू आरजू खुश दिल हंसमुख लाल जिंदल बुलबुल शक्ति जिंदल संजीव बंटी जिंदल और उनके परिवार के सभी सदस्य। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओंकार गायकवाड़ और सायन गायकवाड़ का ही संदेश हमारे पास पहुंचा है। तो आप सभी के पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीर रांझा से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये संदेश आया है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा। पद्मपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। गांव गोंदर करनाल से किरण पाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया और रोशनी देवी। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कंबोज। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और हरमन। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस्वानी वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ प्रभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रतीश संघई। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अत्तार रहमान, शेख हबीबुर रहमान। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से सोनू कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीर रांझा का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: है कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: Discussions focused on enhancing cooperation.
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Navneet Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defense and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter-terrorism.
4: Aaj humne cyber security, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज का प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर हम अपने कार्यक्रम लेकर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित